0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
3: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अल हबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अल हबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
3: तो भाई साहब क्या समझे।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
4: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
5: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
4: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी,
5: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब,
4: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
5: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
4: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
2: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान

0: दरखास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
1: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजे गए रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
4: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूदु हूंदा,
3: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
4: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
3: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
4: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
3: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर, नज़द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।
5: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
6: शान रिजालत मौला।

इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जने पढ़ू था दरूद सजन से पान दरूद बुधन था, यानी जब भी हम सरकार पे दरूद भेजते हैं वो हमारा दरूद समाप्त फरमाते हैं। ये हमारा अकीदा है। ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। समाप्त।

इलाके वालों को पता चल जाए, उनको भी पता चल जाए इस पिंडाल में मौला अली के आशिक बैठे हैं। बावाज़े बुलंद, मैंने वापस सिंध जाना है, आपकी आवाज सिंध तक मेरे कानों में गूंजती रहे। बावाज़े बुलंद।

आशिक बैठे हैं, अभी उतनी आवाज नहीं आई। महफिल वाला पता नहीं कहाँ बैठा है, मैं तो जानता किधर है, सारे ही महफिल वाले। हाँ, ये जितने स्टेज पे बैठे हैं इनको इतनी आवाज सुनाए, इतनी आवाज आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी जितनी ये आशिक अब निकालेंगे। समाज फरमाए बावाजे बुलंद, जितनी अल्लाह ने जान में ताकत दी है उतनी जान के साथ मौलाली के नारे का जवाब देना है। बावाजे बुलंद, हैदर वरगा सकीन कोई वेखी आए जग सारा सफर दबेड़ा।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह, वल्दे हजरत मौलाना सैयद हौसल महाब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरे बच्चे

0: कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
1: 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
2: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
0: तो भाई साहब क्या समझे।
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: खुशखबरी खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
5: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने ऐं ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
4: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
5: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
4: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
5: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
4: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230। केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
3: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशराह ली सदरी व यस्सिर

0: तू ना मेरा
1: एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: शामीन और नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक गहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं, पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
3: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते। रकम बैंक अल अबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अल अबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल अबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
4: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
5: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
4: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते मौजूद आहे।
5: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
5: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
4: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी,
5: ऐं गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब,
4: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
5: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
4: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर, नज़द नोतकाड़ी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अती

0: का सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
1: ऐं हा गोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
4: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 03125252786
1: जी हा 2315525786
4: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib.
2: आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
3: आज कतर के अमीर ए गडल अरब इमारात के सदर ईरान से हमलो रोकने की दरख्वास्त की है. ईरान से आज हमलो तय थियल हो जो रोको वो है. संजीदा गालियों जारी आन. अड़ो मुहिदो चाहूं था जो न रुगो अमरीका पर विच ओभर समेत समूरन मुल्क कबूलियत जोगो हुए. मुहिदे की अहम गाल यह मुहिदो चाहूं था जो न रुगो अमरीका पर विच ओभर समेत समूरन मुल्क कबूलियत जोगो हुए. मुहिदे की अहम गाल यह है ईरान कें

मतलब हथियार फिटा करण न आहे। ईरान इज़त, वकार, ताकत ए कौम के हकन के तहफ़ुज़ से गाल बोल की शुरुआत कंदो आहे। ईरान कें भी सूरत में आवाम ए मुल्क की कानूनी हक तां पोइते न हटंदो। पंहिंजी पूरी तवानाई सां मुल्क की खिदमत कंदा रहंदासीं। अमरीका ईरान सां गालियूं बहाल करण लाइ पंज शर्त रखी छॾिया। अमरीका जो ईरान खे जंग में थियल नुक़सान जो मुआवज़ो ॾियण खां इनकार। 400 किलोग्राम बचाव थियल यूरेनियम हवाले करण जो मुतालबो। ईरान खे रुगो हिकु एटमी थाक खे फाल रखण जी आच। ईरान जी ज़ब्त कयल असासनि मां 25% जारी करण खां बि इनकार। फारस न्यूज़ एजेंसी मूजिब ईरान शर्त क़बूल करे पियो वठे, तॾहिं बि अग्राही जो ख़तरो रहंदो। ईरान जो मौक़िफ़ आहे त समूरनि जंगी कार्रवाइनि ऐं पाबंदियुनि जो ख़ात्मो कयो वञे। अबनाए हुरमस ते ईरान जे हक़ खे तस्लीम कयो वञे।

अमरीका ईरान में जंग बीहर शुरू थियण जा खदशा वधी विया। अमरीका जो बारूद ए हथियार से भरल जहाज इसराइल मोकलण जो सिलसिलो तेज कर छो। इसराइली मीडिया चयो आहे त अमरीका ईरान ते हमलों की तैयारी कर रो आहे। हथियारन से भरल कार्गो जहाज इसराइल पहुंची रहा है। बाज़रान इनकलाब जी अमरीका के बीहर गलती वरजण से फैसला तो जवाब देने की धमकी। तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फसल शेखारसी चयवा ईरान खिलाफ नई जारी जवाब फैसला तो तबाह कदड़ हों। पाकिस्तानी सालसी जरिए अमरीका से गाल जारी आहिन। तेहरान अमरीका तजवीजों से जवाब दे चुको है। यूएई समेत खिते में मौजूद कें मुल्क से दुश्मनी ना है। ईरानी परदेही वजारत के तर्जुमान इस्माइल बाकाई चया है ईरान यूरेनियम के रचाव बाबत पैं हक से हथ न खण नई मामले से कैसे गाल ईरान ज जंग के खात्मे मुतालबा वाजे हैं। यूएई के कुछ महीनों की वाकन का सबक सीख घुर्जे। आबन हुरमज बाबत ईरान जमान ए बेन से रबता भी जारी है।

पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पंजनि के दौरे से लाहौर पहुंची वो। लाहौर पहुंचने से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान बिलावल भुट्टो की आजियां कई। जरियन मूजिब बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर के दौरे दौरान पार्टी अगवाणों से मुलाकातों कदों।

कोकीन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी केतरा भेरा मुल्क बाहर वही पुलिस तफसील हथ करे वरता। पिंकी 25 दिसंबर 2018 ते बाकू वही हुई। पिंकी जो मुड़स गुण इंस्पेक्टर राना अकरम बेरा बाकू वह हो। पुलिस मूजिब राना अकरम पहरियों भेरों पिंकी साथी किरण के पकड़ियो हो। मोबाइल तौर से 5 करोड़ ब गाड़ियों वी बिन्हीं के छड़े दिनों हो। कुकीन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी जेल में कायम अदालत में पेश। पुलिस रिमांड की सजा अदालत 4 दिन जो रिमांड मंजूर करे वरतो। पिंकी का जांच दौरान मंसाज के हवाले से घणी शयूं सामूं आयूं आहिन। मंसाज के धंधे में मुलस किरदारन जा नाला भी जाहिर कया वेंदा। सिंध असेंबली में गालाईंदे घरू वजीर जियाउल हसन लंजार चयो हैदराबाद ए कराची में गुटको तैयार थी रहो है। मंसाज खिलाफ पुलिस कम कर रही है, तारीफ थियण घुर्जे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे कम उम्र है, लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
3: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ए शिफा पानी सेहतमंद जिंदगी की जमानत।
4: अमाजे पेंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल का खिदमत करे रहे है। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पानी की बोतल,
4: 6 लीटर पानी की बोतल ए बियो पानी जो बोतलू मुतारिफ कराए रहे है।
3: उनका अलावा असा वट रिफिल जी सहूलत पिण सस्ते अगते मौजूद आहे।
4: अवां जे एतमाद के कायम कंदे, अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे।
3: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार, शादी ऐं बिन तकरीबन लाए हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासिल लाए होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाए मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पेंजे शहर मातली में अवां जे जातल सुनातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञन था, जे में
4: सीजर, नॉर्मल डिलीवरी, अंडे, पिते, मसाने, बिया मुख्तलिफ़ किस्म जा ऑपरेशन कया वञन था, जे लाए मुख्तलिफ़ किस्म जा माहिर डॉक्टर ए सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
3: जिते डॉक्टर आफ्ताब एवान जनरल फिजिशियन रोजानो मंझंद 2 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी,
4: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ्ताब,
3: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वगे खां शाम 4 वगे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमागी बीमारियुनि जो माहिर मंझंद 12 वगे खां 1 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा,
4: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिजिशियन आचर जे ॾींहुं मंझंद 2 वगे खां 3 वगे ताईं मरीजन जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
3: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर, नज़द नोतकाड़ी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: रतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर
1: चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 0300
3: मातली के हो तो आतली की है
4: सुनते रहो GFM 90.4
5: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
2: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 0331-2525-6135-7786 GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: No.
1: Address: Sindh Pure Drinking Water, Vejo, Soneri Bank, Badin Road, Mathli.
0: खुशखबरी अवां जे पेंजे शहर मातली में अवां जे जातल सुन्यातल एवान मेडिकल सेंटर में हाने हर किस्म जा ऑपरेशन कया वनता जे में
1: सीजर नॉर्मल डिलीवरी अंडे पिथे मसाने बे मुख्तलिफ किस्म जा ऑपरेशन कया वनता जे लाए मुख्तलिफ किस्म जा माहिर डॉक्टर ए सर्जन 24 कलाक मौजूद हुंदा
0: जिते डॉक्टर आफताब एवान जनरल फिजिशियन रोजानो मंजत 2 बजे खां रात 8 बजे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा गायनोकोलॉजिस्ट आई औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
1: आई गायनोकोलॉजिस्ट ए औरतन जी बीमारियन जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफताब
0: आई डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंजन 2 बजे खां शाम 4 बजे ताई डॉक्टर जहूर अहमद मेमण दिमागी बीमारियन जो माहिर मंजन 12 बजे खां 1 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदा
1: आई डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिजिशियन राचर जे दी मंजन 2 बजे खां 3 बजे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद
0: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नजद नोतकाड़ी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
4: सुनते रहिए पॉइंट
5: कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहे आयो
2: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ऐ मुसलसल
2: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 03132525786
2: जी हा 2315-2586
5: GAFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।

दोस्तो यो हर कोई मानू चवंदो आ त जनी लाए मोआसी से कांधी न थिया पर इने किसे जी की के शायद खबर न हुंदी त यो किए छो ऐ छो सडियो त जनी लाए मोआसी से कांधी न थिया आश्क वेचारो जना बीमार छो यो किसो ता के आ सही करे तो बुधाया आश्क वेचारो जना बीमार छो पंजे माइटन आई दोस्तन के चई तो मुखे पंजे महबूब जे मुल्क ते खणी हलो आ उते मरंदुस जो मुजो महबूब मुजो कुल्हे कांधी थे ओ मुझे

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे तो सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद ज़ियाउद्दीन शाह वल्दे हजरत मौलाना सैयद हुसैन महाब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो, इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हजरात से कि इन लम्हात से फ़ायदा उठाए।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबह जो 10 to 10:30 ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347-3141-230।
6: खुशखबरी अवां जे पेंजे शहर मातली में अवां जे जातल सुन्यातल एवान मेडिकल सेंटर में हाने हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञन था, जे में
7: सीजर, नॉर्मल डिलीवरी, अंडे, पिट्ठे, मसाने बिया मुख्तलिफ़ किस्म जा ऑपरेशन कया वञन था, जे लाए मुख्तलिफ़ किस्म जा माहिर डॉक्टर ए सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
6: जिते डॉक्टर आफ्ताब एवान जनरल फिजिशियन रोजानो मंझंद 2 बजे खां रात 8 बजे ताईं मरीजन जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट आई औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
7: आई गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुन जी बीमारियन जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ्ताब
6: आई डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 बजे खां शाम 4 बजे ताईं डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमागी बीमारियन जो माहिर मंझंद 12 बजे खां 1 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा।
7: आई डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिजिशियन आचर जे ॾींहुं मंझंद 2 बजे खां 3 बजे ताईं मरीजन जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
6: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकानी चौक बदीन रोड मातली।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अमरीका ईरान सां ॻाल्हियूं बहाल करण लाइ पंज शर्त रखी छॾिया। अमरीका जो ईरान खे जंग में थियल नुक़सान जो मुआवज़ो ॾियण खां इनकार। 400 किलोग्राम बचाव थियल यूरेनियम हवाले करण जो मुतालबो। ईरान खे रुगो हिकु एटमी थाक खे फाल करण जी आछ। ईरान जे ज़ब्त कयल असासनि मां 25% जारी करण खां बि इनकार। पारस न्यूज़ एजेंसी मूजिबि ईरान शर्त क़बूल करे बि वठे तॾहिं बि अग्राही जो ख़तरो रहंदो। ईरान जो मौक़िफ़ आहे त समूरनि जंगी कार्रवाइनि ऐं पाबंदियुनि जो ख़ात्मो कयो वञे। अबन हुरमस जे ईरान जे हक़ खे तस्लीम कयो वञे। ऐं सिंधड़ी भरिसां पसंद जे परणे तां पलान में अगवा कयल टे निगरियूं बाज़ियाब। पुलिस मूजिबि ॻोठ बागमरी में कार्रवाई करे टिनी निगरनि खे बाज़ियाब करायो वियो। निगरनि खे ॿ ॾींहं ॻोठ अबू बकर जुणजो मां अगवा कयो वियो। मेडिकल खां पोइ निगरनि खे वमन पुलिस हवाले कयो वियो आहे। दहशतगर्दी एक्ट तहत निगरनि जे अगवा जो केस दाख़िल कयो आहे।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में बे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।
2: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद।
3: चेरी है कूलर जिसकी एयर थ्रो में है दम, आइस बॉक्स ठंडक बढ़ाए, गर्मा गर्मी दूर भगाए और बिल।
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: आप सुन रहे हैं
6: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
7: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
8: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
9: सामीन और नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए 2 कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
10: खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
11: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
10: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
11: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
10: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
11: अवां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
10: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713900392।
11: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
10: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
11: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूदु हूंदा,
10: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतनि जे बीमारियुनि जी

0: माहिर डॉक्टर राहिला भाटी
1: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
0: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मैनजन 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
1: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद
0: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाड़ी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
4: सुनते रहो GFM 90.4
5: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
2: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 03125252786
2: जी हा 2315525786
5: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं
1: DAFM
0: 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GAFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
4: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
6: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
1: ऐं हा गोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
4: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 03132525786
1: जी हा 2315-2575-786
4: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।
2: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद ज़ियाउद्दीन शाह, वल्दे हजरत मौलाना सैयद हुसैन महाब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो। इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हजरात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
4: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पेंजे शहर मातली में अवां जे जातल सुन्यातल एवान मेडिकल सेंटर में हाने हर किस्म जा ऑपरेशन कया वनन ता, जे में
5: सीजर, नॉर्मल डिलीवरी, अंडे, पिते, मसाने, बिया मुख्तलिफ किस्म जा ऑपरेशन कया वनन ता, जे लाए मुख्तलिफ किस्म जा माहिर डॉक्टर ए सर्जन 24 कलाक मौजूद हुंदा,
4: जिते डॉक्टर आफ्ताब एवान जनरल फिजिशियन रोजानो मंजत 2 बजे का रात 8 बजे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा, गायनोकोलॉजिस्ट आई औरतन जे बीमारियों जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी,
5: आई गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतन जी बीमारियों जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ्ताब,
4: आई डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 बजे का शाम 4 बजे ताई, डॉक्टर जहूर अहमद मेमण दिमागी बीमारियों जो माहिर मंझंद 12 बजे का 1 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदा,
5: आई डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिजिशियन आचर जे डी मंझंद 2 बजे का 3 बजे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा, डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
4: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नजद नोतकारी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4

0: Express PM. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: अंतर आहे पाकिस्तान जी तरक्की रोकण जी कोशिश कंदर सदाई नाकाम थींदा. कोटा में फौजी ऑफिसरन के खिताब कंदे फील्ड मार्शल आसिम मुडीर चयो आहे त हथियारबंद फौज हर किस्म जी दहशतगर्द जे खात्मे लाइ पुरज़म आहे. पाक फौज अवाम जी हिमायत सां दहशतगर्दी जे खात्मे लाइ पुरज़म आहे. पाकिस्तान जी तरक्कीअ खे प्रोपेगेंडा या परडेही सरप्रस्ती में थींदड़ दहशतगर्दी ज़रिए रोके नथो सघिजे. जदीद जंगी तरीक़ेकार तेज़ीअ सां तब्दील थी रहियो आहे. फील्ड मार्शल जदीद टेक्नोलॉजी मल्टी डोमेन ऑपरेशन टिनी फौजनि में गॾियल सहकार ते ज़ोर भरियो.

0: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
1: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: दुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतन के बीमारियों की माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली, वधिक मालूमात लाए 2347-3141-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: खुशखबरी खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।

0: अवां जे एतमाद खे कायम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे।
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
0: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
1: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
0: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
1: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी,
0: ऐं गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब,
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझन 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
0: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
1: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाड़ी चौक बदीन रोड मातली।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM
0: 90.4। पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 03132525786।
3: जी हा, 2315525786।
0: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह, वल्दे हजरत मौलाना सैयद हुसैन आफ शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो, इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हज़रात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
4: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अघ मौजूद आहे।
5: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713800392।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
5: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
4: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
5: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
4: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंद 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
5: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंद 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
4: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर, नज़द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाए 2347-3141-200 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
1: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
4: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 03125252786
1: जी हा 2315525786
4: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
4: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: सामीन और नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
6: अमड़ सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: दुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन के बीमारियों की माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
7: रोजानो सुबह जो 10 खा रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी, आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी, आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347-3241-230।
8: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
9: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
8: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
8: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
9: अवां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
8: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
9: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
8: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
9: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
8: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी,
9: ऐं गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब,
8: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
9: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
8: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो जी एफ एम।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हिकड़ी जे दौरे ते क्वेटा पहुची वियो। एयरपोर्ट ते गवर्नर जाफर खान बदुखेल वज़ीर आज़म जो आदर भाव कयो। वज़ीर आज़म नेशनल एक्शन प्लान जे सूबाई एक्सपेक्ट कमेटी जे इजलास जी सदारत कंदो। वज़ीर आज़म क्वेटा में सूबाई क़यादत सां मुलाक़ातूं कंदो, अहम फैसला कया वेंदा।

0: अमरीका सां ॻाल्हियुनि जो मक़सदु हथियार फिटा करणु नाहे। ईरान जे मफ़ादनि, इज़त ऐं वक़ार जो तहफ़ुज़ कयो वेंदो। ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान चयो आहे त ईरान कंहिं बि सूरत में ईरान ऐं ईरानी अवाम जे हक़नि तां हथ न खणंदो। समूरी तवानाई सां गॾु ईरानी अवाम जी ख़िदमत कंदा रहंदासीं।
1: ईरानी फ़ौज जो हथ बे ट्रिगर ते आहे। हमिलो थियो त वॾे पैमाने ते जवाबी कार्रवाई कई वेंदी। ईरानी ख़ातिमुल अंबिया ब्रिगेड जो चवणु आहे त ॿीहर हमिलो कयो वियो त ईरानी फ़ौज ट्रिगर दॿाइण जे लाइ तयार आहे। तकिड़े फ़ैसिलाए ते ताक़तवर ऐं वॾे पैमाने ते जवाबी कार्रवाई कई वेंदी। ईरानी अवाम जो हर सतह ते दिफ़ा यकीनी बणाए वेंदो।
0: वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो कतरी हम मनसब सां फोन ते राब्तो। बतरफन लागापन ऐं विच ओभर जे तब्दील थींदड़ सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल। ॿिन्ही अॻवाणनि जो खिते जे अमुन ऐं इस्तेकाम लाइ सफारती कोशिशूं जारी रखण ते ज़ोर। शहबाज़ शरीफ़ चयो त पाकिस्तान खिते में चढ़दार अमुन जे क़याम लाइ सफारती कोशिशूं जारी रखंदो।

रूसी सदर व्लादिमीर पुटिन ॿिनि ॾींहनि जे दौरे ते अॼु चीन पहुचंदो। रवानगीअ खां अॻु मीडिया सां ॻाल्हाईंदे रूसी सदर जो चवणो त रूस ऐं चीन जा मज़बूत लाॻापा आलमी सतह ते इस्तेहकाम जी ताक़त बणजी चुका आहिनि। मॉस्को ऐं बीजिंग जो मक़सद कंहिं बि मुल्क ख़िलाफ़ इतिहाद ठाहिण न पर आलमी अमन ऐं खु़शहाली जे लाइ गॾियल सहकार करणु आहे। रूस ऐं चीन गॾियल क़ौमुनि ऐं शिंघाई तआवुन तंज़ीम जहिड़नि प्लेटफॉर्म्स तां गॾिजी आलमी ऐं इलाइक़ाई मसइला हल करण जे लाइ कम करे रहिया आहिनि।

जेकम बाद में पसंद परिणीता घोट के सहण वाले वाक्य खिलाफ सिंध असेंबली में मजहबती ठहराव पेश ठहराव एमक्यूएम के एमपीए मोहम्मद आमिर सदीकी पेश कयो। सिंध असेंबली के इजलास दौरान वजीर ने मेंबर पारा मुस्लिम मामलों से बहस सीनियर वजीर शर्जीले नाम मेमुन चयो तो डॉलर जो अघ वधण सबब सजे मुल्क की रेड लाइन मनसूबन की लागत वधी आहे। रेड लाइन मनसूबे ते कम कंदड़ ठेकेदार मिक्स लेंथ ते कम करण का इनकार कयो। हाणे कम बी कंपनी खे डि॒नो आहे।

0: लाड़कानो जो मोरिया लूपबंद आबपाशी खाते जे लाए सोनी झिरकी बणियल आबपाशी खाते मोरिया लूपबंद के बोड जे सीजन में कमाई जो जरियो बणाए छडियो अरबे रुपया खर्च करण बावजूद लाड़कानो जो मोरिया लूपबंद मजबूत न थियो बोड जे सीजन में बंद जी मजबूती जे लाए छलाल पत्थर बणड़ी वयो आबपाशी खाते पारां बंद के महफूज बणाइण जे लाए मुस्तक़िल स्कीम ठाहिण बदिरां फ्लड फाइटिंग ते भाड़ण जो सिलसिलो जारी 2024 में भी साॻी साइट ते वॾी मक़दार में पत्थर उछलाया विया जेके बि ज़ाया थिया 2025 में दरिया में बोड दौरान फ्लड फाइटिंग में किरोड़ रुपियनि जो पत्थर उछलायो वियो जेको बि लुड़ी वियो आबपाशी खातो बोड ख़तम थियण खां पोइ हथ हथ ते रखी वेही रहियो
1: सिंधड़ी भरिसां पसंज परणे तां परंद में अगवा कयल टे निगरियूं बाज़ियाब पुलिस मूजिब गोट बाज़ मरी में कार्रवाई करे टिनी निगरनि खे बाज़ियाब करायो वियो आहे

0: खे बडीअ गोट अबूबकर जुणे जो मां अगवा कयो वियो हो। मेडिकल खां पोइ निगरनि खे वुमेन पुलिस हवाले कयो वियो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
6: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
7: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां खिदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
6: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
7: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, अंडे, पिथे, मसाने ऐं ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
6: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी,
7: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब,
6: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझन 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
7: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
6: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: क्या वहाँ पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
1: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 03125252786।
1: जी हा 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

तुम्हारी उम्मीद मौजज़ों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मौजज़ों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान होते हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। पुरकुल दुआओं के समय है, चाहतों की बारिश और लाजवल खजानों के साथ दुआ है, पल से पल तक, आज से कल तक, सुबह से शाम तक, दिन से रात तक, नींद से जागकर, जमीन से आसमान तक, जिंदगी से मौत, चांद से दर्द, गम से खुशी तक, दिल से दिल तक, जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक, अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे, तो आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल जनाब, सो आप सुन रहे हैं ZFM88 नेटवर्क, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरे मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। ओके जनाब, सो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनके बारे में अगर आप नहीं जानते, इनके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो भाई इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताया जाता है कि किस तरीके कार को फॉलो करके आप ना सिर्फ अपनी खूबसूरती को जो है ना वो बढ़ा सकते हैं, बल्कि आप अपनी खूबसूरती का ख्याल भी रख सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भाई आपकी खूबसूरती बढ़ती रहे, आपकी खूबसूरती में चार चांद लग जाए, तो आपको हम बताएंगे कि क्या तरीके कार फॉलो करके, कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आप अपनी खूबसूरती को बढ़ाएंगे और आप खूबसूरत और पाले पाले बनते जाएंगे। ओके जी, तो सब कुछ बताएंगे, लेकिन कितना कितनी जल्दी क्या है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है, तो बिल्कुल ही जरा अपना तारीफ करवाते हैं लिसनर्स फॉर रीसेंट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर यू आर जे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा आप लोगों के साथ साथ मुखातिब हो चुकी है। हाँ जी जनाब, प्यारे से प्रोग्राम में आप लोग प्यारे प्यारे लिसनर्स के साथ साथ आपको प्यारा बनाने के लिए, उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं और आप हमारा शो सुन रहे हैं, तो जनाब अपने होने का एहसास दिलाएंगे और साथ ही साथ अपने हालचाल बताएंगे। सो डियर लिसनर्स, अंत के हालत में कैसे है आपकी हालत, उम्मीद है शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर आपने एंट्रियां मार ली है। आपको पता है ना, जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी पूरी 3 बजे तक। तो यस, आप हमारे साथ मौजूद रहिए और बताइए कि आप भी हमारे साथ कहां से सुन रहे हैं, ये भी मुझे पता होना चाहिए। ओके जी, और यहां पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए या फ्री होकर हमारा इंतजार कर रहे थे, ऐसी बहुत सारी आंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। सो भाई अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं, तो जनाब अब जल्दी से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में बनेगी चटपटा मसाला, बिकॉज आली रे आली सदराली बोस आपके होंठों पर 440 उल्के संभाल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्के संभाल लाते और यहाँ पर आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं जी। आगे से प्रोग्राम करते बहुत ही प्यारे से कलाम के साथ, कलाम सुन के उसके बाद ना हम जैसे ही वापस आप लोगों से मुखातिब होते हैं, तो आज के प्रोग्राम में क्या होगा ये जरा आप लोगों को बताएंगे। तो सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए, क्योंकि आपका हमारे साथ पूरी 3 बजे तक का है।

0: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
1: अव्हांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
0: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
1: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
0: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
1: अव्हां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था जंहिं में
1: सीज़र नॉर्मल डिलीवरी आंडे पिथे मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा
0: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
1: ऐं गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
0: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
1: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद
0: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM
3: 90.4। पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
1: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 03125252786।
1: जी हा 2315525786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
2: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे तो सेहत नस्लन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी, बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।

0: तू तो मेरा फैन।
1: White H Beauty Cream 5-day beauty plan के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

दोस्तों वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास. आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क. हाँ जी, हमारे साथ मौजूद है सखर मोरो, मीरपुर खास मटियारी, सेक्रेट मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं. व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से. तो बिल्कुल भाईजान, अगर आप जानना चाहते हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आप लोगों को हम बताते हैं कि कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने वाले हैं. अगर आप ये सोच रहे हैं कि गर्मियन जो मौसम आए, गर्मियन में केयर क्रीम लगाईंदा, बाबा तां लगाईंदा, असां लगाईंदा, सब लगाईंदा आहिनि, ॿुधाईंदा न आहिनि, उहा हिकिड़ी अलॻि ॻाल्हि आहे. अच्छा, इहा हक़ीक़त अथव. गर्मियुनि जे मौसम में अक्सर माण्हू चवंदा आहिनि त बाबा असां क्रीम नायूं लॻाईंदा, पर हू लॻाईंदा आहिनि, लॻाईंदा आहिनि ऐं लॻाईंदा कयो, पर उहे प्रोडक्ट लॻाईंदा कयो जेके तव्हांजी स्किन मुताबिक़ हुजनि, जेके गर्मियुनि जा प्रोडक्ट हुजनि, सम्झो था. ओके, सो अगर तव्हां बि गर्मियुनि में कोई सुठो प्रोडक्ट चाहियो था त तव्हां वटि हुजे, तव्हां वटि नाहे कोई बि ऑप्शन, तव्हां वटि इलाही सारा आहिनि, लेकिन तव्हांखे सम्झ में ॻाल्हि नथी अचे त असांखे छा करणो आहे, त तव्हांखे व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करणो आहे. व्हाइट एज जा ब्यूटी प्रोडक्ट्स आहिनि जेके तव्हांजे खूबसूरती जे लाइ आहिनि. ऐं व्हाइट एज जा ब्यूटी प्रोडक्ट्स में अगरि असां ज़िक्र कयूं व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो, त व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जेका आहे नाइट क्रीम आहे, राति जे टाइम तव्हां लॻाईंदा. एवोकाडो एलोवेरा से तयारु थियल आहे, खीर बि शामिल अथसि जनाब हिन जे अंदरि तव्हांजी खूबसूरती खे वधाइण जे लाइ. उन खां ॿी मज़े जी ॻाल्हि त अगरि व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम तव्हां लॻायो पिया त तव्हांजी स्किन जेका आहे न उहा हमेशा फ्रेश रखंदी, ऐं तव्हांजी स्किन जेका यंग रहंदी, ऐं तव्हांजी स्किन में जेके बि अहिड़ा मसला आहिनि जेके तव्हां चाहियो था बाबा इहे त न हुजनि, इहे त न खपनि असांखे, त उहे सभु ख़तम थी वेंदा. सो तव्हां लॻाए सघो था व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम राति जे टाइम. ऐं हुन खां अलावा जेको आहे न, अगरि तव्हां कोई सुठो साबुण वठणु चाहियो था, साबुण तव्हां वटि कोई सुठो न आहे, या फिर तव्हां फेस वॉश इस्तेमालु कंदा, तव्हां वटि सुठो फेस वॉश न आहे, ऑप्शन न आहिनि, ऑप्शन तव्हां वटि खोड़ा आहिनि पर तव्हांखे सम्झ में ॻाल्हि नथी अचे, त तव्हांजे लाइ व्हाइट एज जो फेस वॉश बि मौजूदु अथव ऐं व्हाइट एज जो साबुण बि मौजूदु अथव. इहे ॿई चीज़ूं आहिनि. हाणे तव्हांखे बिल्कुल बि तव्हां इहो न चवंदा, मां इहो बिल्कुल बि न ॿुधणु चाहियां थी, त तव्हां चओ त भाउजी असां त साबुण हणंदा आहियूं, भाउजी असां त फेस वॉश हणंदा आहियूं. तव्हांजे लाइ ॿई चीज़ूं आहिनि, तव्हांखे जेको वणे तव्हां लॻायो, जेको तव्हां लॻाईंदा उहो तव्हांखे लॻाइणो पवंदो, सही आहे. लेकिन हा, व्हाइट एज जो ऐं व्हाइट एज जा प्रोडक्ट जेके आहिनि तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए छॾिया आहिनि. अगरि न बि मिलनि था, किथे नथा मिलनि, तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा वञो था, जीअं असां चऊं बाबा अॻिते ॻाल्हि पहुचायूं, अॻिते उहे सम्झनि ॻाल्हि खे त बाबा किथे किथे नथा मिलनि हीउ प्रोडक्ट, ऐं हू अवेलेबल कराए छॾे. उन खां अलावा ॿियो हिकिड़ो प्रोडक्ट असां वटि मौजूदु आहे जंहिंजो नालो आहे व्हाइट एज जी लवली क्रीम. अगर व्हाइट एज जी लवली क्रीम तव्हां न लॻाई आहे न, सम्झो तव्हां कुझु बि न कयो आहे ज़िंदगी जे अंदरि, छो त व्हाइट एज जी जेका लवली क्रीम आहे न, रेडियंट अल्ट्रा वाइटमिन सां तयार थियल आहे, जंहिंजे अंदरि 30 वाइटमिन जा कैप्सूल शामिल अथव, सम्झो था, 30 वाइटमिन जा कैप्सूल. ऐं हुन में जेको आहे न, तमामु वाइटमिन्स मौजूदु आहिनि. हिन जे अंदरि सनस्क्रीन बि शामिल आहे, जेका तव्हांजी स्किन जी जेको आहे न, प्रोटेक्शन कंदी आहे. उस समय अगरि तव्हां निकिरो था, तव्हांजो कोई बि अहिड़ो कमु आहे, या हिन में इहो आहे त एज लिमिट्स बि न आहिनि, तव्हां अगरि कहिड़ी बि एज में लॻाए सघो था. हीअ फेयरनेस क्रीम आहे, ईज़ीली तव्हां केरी करे सघो था, पाण सां गॾु मेकअप नथा यूज करे सघो, त व्हाइट एज जी लवली क्रीम लॻाए वठो. बाबा वाह, जो प्रोडक्ट तयार कयो अथऊं व्हाइट एज वारनि. ऐं तव्हां हर कोई घर में हर भाती लॻाए सघे थो, नंढा आयो, वॾा आयो, पुराणा आयो, जवान आयो, सभु लॻायो, सही आहे, जे सभु सुहिणा थी वञनि ऐं तव्हांजी स्किन सफ़ा ऐं असली चमकंदी वधंदी. हिन जे अंदरि नंढा सफ़ा नंढा ग्लिटर टाइप मौजूदु आहिनि, जेको अगरि तव्हां लॻाए त तव्हांजो फेस जेको आहे न, शाइन बि कंदो आहे, सो तव्हांखे ख़ूबसूरती मिलंदी, तव्हांजी स्किन में ग्लो ईंदो, तव्हांजो फेस शाइन कंदो, ऐं तव्हांखे उस खां जेको आहे न, प्रोटेक्शन बि मिली वेंदी, सम्झो था. एॾा सारा फ़ाइदा सिर्फ़ हिकिड़े प्रोडक्ट जंहिंजो नालो आहे व्हाइट एज जी लवली क्रीम. सो व्हाइट एज जी लवली क्रीम तव्हां सभु लॻायो, मर्द मायूं सभु हणंदियूं, बाबा सभु हणो, बसि सभु हणो, पंहिंजे करीब जनरल स्टोर तां वञो ऐं मालूमात वठो किथे मिले थो, किथे नथो मिले, जीअं असां अवेलेबल कराए सघूं, सही आहे. अगरि अवेलेबल आहे त पोइ तव्हां वञी वठी अचो, ऐं सफ़ा मुनासिब क़ीमत में आहे, तव्हां मतिलबु अफोर्ड करे सघो था, एतिरनि पैसनि में तव्हांखे मिली वेंदो. उन खां अलावा अगरि जेके माण्हू एक्नी खां परेशान आहिनि, दाणा आहिनि तव्हां खोड़ सारा, दाणनि खे ख़तम करणु चाहियो था, त तव्हांजे लाइ डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब आहे. बिल्कुल जी, डॉक्टर पिंपल जो एंटी एक्नी जेको ट्यूब आहे न, ही तव्हांजे दाणनि खे ख़तम करे छॾींदो. आयुर्वेदिक फार्मूलो आहे जनाब, तव्हांजी स्किन में दाणा आहिनि या फिर तव्हांजे एक्नी जो क़िस्म तव्हांखे सम्झ में नथो अचे, त हर स्किन जी प्रॉब्लम जे लाइ आहे जनाब डॉक्टर पिंपल ट्यूब. ही तव्हां हर स्किन ते लॻाए सघो था, हर स्किन वारा इस्तेमालु कनि माण्हू, ऐं इस्तेमालु करण खां पोइ तव्हांजे चहिरे जा एक्नी ख़तम थी वेंदा, एक्नी जा निशान ख़तम थी वेंदा. तव्हांजी स्किन ते अगरि कोई ॿियो निशान आहे, जीअं तव्हांखे धक लॻी वियो आहे, तव्हांखे कट अची वियो आहे, अहिड़े क़िस्म जा निशान बि अगरि तव्हांजे चहिरे ते मौजूदु आहिनि, त उहे बि ख़तम थी वेंदा, सही आहे, सम्झो था. सो लॻायो
डॉक्टर पिंपल नाले सां ही ट्यूब अथव, हीअ बि वाइट एश वारनि जो ट्यूब आहे, ठीकु आहे। लेकिन वाइट एश जो बि तव्हां नालो खणो त भले खणो, पर डॉक्टर पिंपल नाले सां न हीउ जेको ट्यूब आहे हीउ फेमस अथव। सो डॉक्टर पिंपल नाले सां ट्यूब आहे, एंटी एक्नी जो ट्यूब आहे, सफ़ा ईअं वी आई पी नंढड़ो नंढो ट्यूब आहे, ऐं अफोर्डेबल प्राइस में तव्हांखे मिली वेंदो। तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर सां वञो, हुतां मालूम कयो ऐं मिले थो त वठी अचो, सही आहे। जंहिंखे बि एक्नी आहे न, हुननि खे गिफ्ट कयो या पाण लॻायो, तव्हांजी मर्ज़ी आहे बाबा, जीअं वणेव कयो पर वठो, सही सही आहे। ऐं तव्हांजे एरिया में अवेलेबल नाहे त पोइ तव्हां डायल कंदा 0315-799-0595। ही नंबर डायल कयो, पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो ऐं बाबा फ़ाइदो हासिल करियो वाइट ए जे प्रोडक्ट्स मां, सही आहे। तो वाइट ए जा प्रोडक्ट लॻायो ऐं सफ़ा वाइट वाइट थी वञो। हुन सां गॾोगॾु गाना बि लिस्ट में मौजूद आहिनि। हा, मूं अॼु अव्हां खां सवाल पुछो आहे न, सवाल पुछो आहे त छा तव्हां पंहिंजे नंढपिण जा या फिर तव्हां पंहिंजा पुराणा फोटोज़ ॾिसी करे पाण ते तव्हांखे खिल ईंदी आहे, क्रिंज महसूस थींदो अथव त असां नंढपिण में या पुराणा फोटो असांजा केॾा ईअं क्रिंज आहिनि, इहे ॾिसी करे पाण ते खिल ईंदी आहे, कावड़ ईंदी आहे, अॻे असां कहिड़ा कम कंदासीं। हाणे छो त ज़मानो थोरो चेंज थी वियो आहे न, ऐं हाणे असां सभु थोरा हू थी विया आहियूं, एस्थेटिक फोटोज़ असांखे खपनि पंहिंजे गैलरी में। उन हिसाब सां ॾिठो वञे त जेके असांजा पुराणा फोटोज़ आहिनि उहे ॾिसी असां थोरो चवंदा आहियूं त बाबा हीउ छा कंदासीं असां, ऐं असांखे थोरी खिल बि ईंदी आहे। सो तव्हांखे ईंदी आहे न, ॿुधायो मूंखे फेवरेट गानो हलायो अथऊं पंहिंजो, सो ॿुधंदासीं। उन्हनि माण्हुनि सभिनी खे डेडिकेट, चङे सुठो लॻंदो।

अॼु मूं ट्राए कई, कोशिशि कई त प्रोडक्ट जे बारे में तव्हांखे ॿुधायां, त थोरो अलॻि ॿुधायो, अलॻि तरीक़े सां. रोज़ तव्हांखे उर्दू में ॿुधाईंदी आहियां, सो अॼु मूं सिंधी में ॿुधाए छॾियो, समुझो था. जीअं सभिनीनि खे ॻाल्हि सम्झ में अचे, उन्हनि माण्हुनि खे जेके सिंधी सम्झंदा आहिनि, सिंधी ॻाल्हाईंदा आहिनि, असांजा सुहिणा सिंधी आहे. हा बाबा, वाइट एज ब्यूटी क्रीम जेका न, हुनजे अंदर एवोकाडो आहे, एलोवेरा ऐं खीर बि अथसि. इहे टई चीजू अथसि, टई चीजू मिली करे तव्हांजे लाइ वाइट एज जी क्रीम ठही अथव. सो लॻाइजो सही आहे.

love this song. ओके जी, बिल्कुल आप हमारे साथ मौजूद हैं और ये दर्दे दिल कहती हैं कि सिदरा मीरपुर खास में वाइट एज नहीं मिल रही. बिल्कुल ये बात मैंने आपकी कल बोली थी मेहर इरफान सियाल साहब को, उन्होंने कहा था कि जल्दी हम मीरपुर खास में अवेलेबल करा देंगे. जहां जहां पर अवेलेबल नहीं है तो आप बता दिया करें ताकि हम आपके एरिया में अवेलेबल करा दें, क्योंकि हमें आप लोगों से मोहब्बत है. हम चाहते हैं कि आप सारे लोग खूबसूरत हो जाए. ठीक है, और ये हमारे साथ हमारी नोरी मौजूद है. हेलो हाय प्यारी सिदरा, कैसी हो? शो बहुत अच्छा है, मैं बहुत सालों के बाद शो सुन रही हूँ. आपका आवाज बहुत अच्छी है. मैं नोरी कराची से, सलाम सबको. वालेकुम अस्सलाम जानू. वैसे ये गाना वैसे ही लगाया है मैंने. आई ना समझो कि कोई रूठा है सिदरा से. अरे ना भाई, अपने फेवरेट गाने सुनने के लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि भाई अगर ये वाला मोमेंट हो जाए तब हम अपने फेवरेट गाने सुनेंगे. ना नको, बिल्कुल नहीं सुने जब आपका दिल चाहे. और ये निदली कहती है कि पता नहीं क्या हुआ है जी, ये मुझे भी समझ नहीं आई इस व्हाट्सएप वाले कमेंट किया. और किशोर भाई कहते कल मारने का कमेंट ऐसी खबर हुई. वाकई बाबा मानन के मुझे परवाह थव, ये समझो तब अच्छा ले आसा जी. हजार खान भाई कहते वेलकम टू शो, लाजवाब है आपका वाइट एज ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन प्रोग्राम गुड है. हाओ दाई बुदा कहते अदी हम एसी और नींद छोड़कर आपका शो एंजॉय कर रहे हैं. मजो इंदा वाला निंद्रा करे चाह कर दो.

प्रोग्राम व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से लगा दी जाइए खूबसूरत होती जाइए। अच्छा निदा कहती है कि कसम से मेरे साथ सुबह ही ये सीन हुआ था, मैं अपनी ओल्ड पिक्स वीडियोस देख रही थी और सोच रही थी वक्त के साथ सब कुछ चेंज हो जाता है, पहले कैसे थे और अब देखो कैसे हैं। तो ऐसा ही है भाई, ये बात जो है ना मैंने मतलब देखकर और समझकर ये टॉपिक आप लोगों से पूछा क्योंकि ये ऐसा हुआ है मेरे साथ। अच्छा चाचा खालिद कहते हैं मुझे तो अपनी पुरानी तस्वीरें बहुत अच्छी लगती हैं, लुकिंग क्यूट यंग एंड स्मार्ट योर टॉपिक आंसर कहो तो। नहीं नहीं नहीं रहने देते, आप हमें चाचा के लुक में अच्छी लगते।

0: साबुन को ज्यादा ही फास्ट है. अरे जहीर अब्बास भाई, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक है, मजे में प्रोग्राम सुन रहे हैं. और मुझे बताएं व्हाइट एश ये प्रोडक्ट्स आप कब इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट लगाएंगे ये भी बताइए जरा. और ये अली अकबर ब्रोही भाई हमें सुन रहे हैं. लो कैसे हैं? ठीक ठाक है.
1: वेचो न इंदो वा बहाना कंदो आ, प्यार न दींदो वा बहाना कंदो आ,
0: वास भाई वास,
1: प्यार न दींदो वा बहाना.
0: किशोर भाई कहते हैं टॉपिक अजी, मैं सच में क्या बताऊं आपको, मेरी पिक्स तो पूरा घर देकर मुझे तंग करते हैं और मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं. सही और हजार खान भाई तवां के शो वड़े तो मोबतू मोबतू लाड़काने वारा माण्हू वाके सोड़ा हूंदा छो त लाड़काने में वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलन था तव्हां जे भी एरिया में मिलंदा जॾहिं तव्हां थोरो हथ पेर हणंदा ऐं तव्हां नंबर ते राबितो करे हुननि खे ॿुधाईंदा त बाबा तव्हां बि अवेलेबल कराइण चाहियो था पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते जे तव्हां बि लाड़काने वारनि जी सुण थी वञो. सो नंबर अथव 03-15-799-0595 नंबर ते राबितो कयो. सही
1: आहे
0: कहिड़े गाने कट ते ॿुधायो अच्छा. एसन अरबाणीअ में सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम एसन, क्या हाल है? ठीक ठाक है. अरे बाबा 10 रुपया गुम थियण ते माण्हू उदास थींदो आहे. छा 10 रुपया त अॼुकल्ह ॿार बि नथा वठनि, महांगाई पेतिरी थी वई आहे.

अच्छा मुझे भाणी जी आना नंढड़ी वॾाई पे के डी कोठी या डी सो डी इज कंप्यूटर क्रीम त मुखे याद आयो वा नंढड़ी आ सफा नंढड़ी चंदी मुखे डी दियो माना उहा 10 रुपया वठनी आ समझो दा जेके थोड़ा उनका वडा न उहे 10 रुपया भी नाइन वठंदा पंजाब भी नथा वठन।

0: आहे बाबा ठहंदो आहे
1: बीचणंदो आहे ॻाल्हाइण ते बीचणंदो आहे।
0: ओके साईं वाह जो गानो हलायो थम। वासव भाई हमारे साथ मौजूद है। वासव भाई हेलो, कैसे हैं? ठीक ठाक है, मजे में प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपको वेलकम कहा जाता है। और ये जी हमारे साथ हैं हालार अहमद भाई, आपको भी वेलकम करते हैं।
1: माना करे हर हर प्यो मारी दो
0: दर्दी दिल, आपको भी वेलकम करते मेरी प्यारी जान।

0: की हाल आर अहमद भाई आपको भी वेलकम करते हैं।
1: मारी दो माना करे हर हर अप्यो मारी दो
0: दर्दी दिल आपको भी वेलकम करते हैं।

0: अब आप सुनेंगे
1: पाकिस्तान की तरक्की रोकने की कोशिश कंदड़ सदा ही नाकाम थींदा। कोचा में फौजी ऑफिसर्स के खिताब कंदे फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर चयो आहे त हथियारबंद फौज हर किस्म जी दहशतगर्दी जे खात्मे जे लाइ पुरअज़म आहे। पाक फौज अवाम जी हिमायत सां दहशतगर्दी जे खात्मे जे लाइ पुरअज़म आहे। पाकिस्तान जी तरक्की खे प्रोपेगेंडा या परदेही सरपरस्तीअ में थींदड़ दहशतगर्दी ज़रिए रोके नथो सघिजे। जदीद जंगी तरीक़ेकार तेज़ी सां तब्दील थी रहियो आहे। फील्ड मार्शल जदीद टेक्नोलॉजी मल्टी डोमेन ऑपरेशन ऐं टिन्ही फौजनि में गॾियल सहकार ते ज़ोर भरियो।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर

0: रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 03125252786।
1: जी हा, 2315-2575-786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

आप सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास। आप सुन रहे हैं जी FM 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहराब और मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं इस्तेमाल करें बताइए ना, पता तो चले गाल काते पोतिया। ओके जी, सो इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरत होते रहिए, क्योंकि खूबसूरतियां हर कोई हासिल करना चाहता है। ऐसा एक मुझे कोई इंसान बताइए, हथ रखो न मानो तो जो चवन जब बाबा मां खूबसूरत थियण न थो चाहियां। हर कोई खूबसूरत थियण चाहिंदो आहे, पर इहो आहे त कंहिंजा कंहिंजा तरीक़ा थोरा अलॻि हूंदा आहिनि। तव्हांजो अगरि तरीक़ो थोरो मुख़्तलिफ़ आहे, अलॻि आहे, ऐं तव्हांखे खूबसूरती नथी मिले, ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे तव्हांजो तरीक़ो ग़लति आहे। अगरि तव्हां सही तरीक़े खे फॉलो कंदा, सही प्रोडक्ट जो इस्तेमालु

हा बाबा सभु लॻाईंदा सभिनी खे ॿुधायां थी त तव्हां सभिनी जे लाइ अथव ऐं अच्छा हा तव्हां छा था चओ अच्छा वरियाम अली जतोई हमारे साथ मौजूद है वरियाम आपको वेलकम हो गया अच्छा हज़ार भाई कहते हैं सही आदि सिधे में बुधायो असां जड़न के समझ में इंदो हाजिर हा

अच्छा निदड़ी कहती है कि कोई रूट भी जाए तो मनाती नहीं शीजा, बस अलग ही बंदी है ये। हाओ लगन दो ये वाकई माहिना प्लैनेट जी नाया ये लगन दो।

ओके जी, हमारे साथ आरजे बालाज मौजूद हैं, आपको भी वेलकम करते हैं। सजरा जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? ऐसे बड़े दिनों के बाद हमारे प्रोग्राम में आए हैं, कहाँ गुम थे? अच्छा, स्मार्टू गोपांग हमारे साथ मौजूद है कंबर सिटी से, हमारे शो सुन रहे हैं। वेरी नाइस शो, थैंक यू वेरी मच। आरजे बालाज कहते हैं, बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज सुनी है, आपकी आवाज में दो लाइनें मेरे लिए भी बोले, जैसे हाँ ये जरूर बोलूंगी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए ताकि खूबसूरत हो जाए।

अरे सुमाटो, ये जो आपने गाना लिखा है ना, बिल्कुल सी मैंने ये गाना देखा और ये मुमताज मुलाई की आवाज में गाना था, तो मुमताज मुलाई का हम गाना पहले सुन चुके हैं ना, तो ये वाला गाना हम कल वाले प्रोग्राम में चलाएंगे, ठीक है? मतलब पक्का वाला गाना चलाऊंगी, यही वाला मुझे याद हो बस अच्छे तमाम थोड़ा याद जा रहा है जी। अजारो गल समझंदा आहियो।

कहोगे जी बहुत ही प्यारा गाना यहाँ पर आप शमन मिराली की आवाज में सुन रहे हैं। और ऐसन कहते हैं शमन जो गानो आहे, अच्छा शमन जो यो गानो ऐसन ऐसा सुबह बुधंदा जो ही दिल टूट वो गानो बुधो से सनवाला बिरोई हमारे साथ ही थी आपका प्रोग्राम में मोरो एफएम से सुनता हूँ, हमें बहुत पसंद है मैं बलूचिस्तान से हूँ। सनवाला बिरोही वेलकम करते हैं प्यारे भाई को। ओके, जहाँ जहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल नहीं है तो भाईजान आपको मैं बताती हूँ, बहुत मर्तबा बताती हूँ कि इस नंबर के ऊपर आप रابطہ कीजिए और बताइए कि आपके एरिया में नहीं मिल रही, ताकि तव्हां जे गोठ में, तव्हां जे सिटी में, तव्हां जे पाड़े में अवेलेबल कराई वञे डी स्किन ब्यूटी क्रीम, जे तव्हां आराम सां वञी वठी अचो परचेज कयो। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि वठणो आहे, समझो था, ॿई चीजूं साथ में लॻायो जीअं सफ़ा साथ में सोना थी वञो। नंबर आहे 03 15 799 05 95।

अच्छा पोस्ट के लाइक शेयर करना हेलो ओके मेरे साथ मौजूद है अस्सलाम वालेकुम सरोजानी क्या हाल है हमेशा की तरह आज भी मैं आपके साथ साथ हूँ आज मेरी पसंद का गाना प्ले करना मेरी पसंदीदा सिंगर का गाना आप तो जानती हैं ना हाँ जी बिल्कुल जानती हूँ ये नहीं अपना गाना सुने जरा कहती हैं बिल्कुल सिडो मुझे अपनी पुरानी पिक्स पर हंसी आती है कि मैं कांटे ज्यादा लगाती थी कांटे ज्यादा लगाती थी इस बात पर हंसी आती है चलिए हमारी प्यारी लुबी हमारे साथ मौजूद है बहुत शुक्रिया ओके जी फजीला सिंधी भी हमें सुन रही है फजीला सिंधी क्या कह रही है वालेकुम अस्सलाम और हैप्पी ट्यूसडे आफ्टरनून और आपने सब सुनने वाली लड़कियों को सलाम दिए हैं और अपनी प्यारी अम्मी जान को भी सलाम दिए हैं बहुत शुक्रिया जी और कायनात को भी सलाम दिए हैं इरम हमें सुन रही है इरम आपको वेलकम करते हैं प्यारी सी लड़की और ये हमारे साथ हैं कहते हैं फरमाइश वाला गाना नथा हलायो बाजी तवा मुझे फरमाइश हलायो कावड़ आशा मुनवर मोराई जो गानो हुयो मरा त कंहिंजे लाइ मरा इहो गानो बा मां कोशिश कंदमि हलाईंदमि सही और ये हमारे साथ हैं कश्यप कहती हैं दिलबर जानी आप कैसी हैं गुड आफ्टरनून हम भी अच गए आपके लाजवाब शो में सॉन्ग सुनवाना तुम मिले जब से फील हुआ तब से ओके और दादू खां इमदाद जतोई अब्दुल खालिक जतोई हैं मुबशर हुसैन जतोई किफायतुल्लाह भी हमारे साथ मौजूद है लगता है भाई आपका मैसेज मिसिंग पार्ट हो चुका है तो आप सब भाइयों को वेलकम करते हैं प्रिंस अहमद अली रिंद हैं फ्रॉम अहमद अब्बास वालेकुम अस्सलाम कहते हैं गाना ओके जी गाना सुनाएंगे और लिखा है कि जी बिल्कुल छोटे हैं और हंसी आती है हाँ इस बात पर हंसी आती है कि हम छोटे थे इरम कहती है आप ही माँ ठीक आया मीरपुर खासी अब्दुल्ला बहर है वालेकुम अस्सलाम कहते बाजी व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम की रिजल्ट जबरदस्त है प्लीज आज कोई भी शमन का गाना लगाएगा बिल्कुल जी शमन का गाना आपने सुना होगा मेरे प्यारे भाई और गोट मोहम्मद तैयब थेबू को हबीबुल्ला थेबू है ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद का गाना लगाइए ओके ओके जी लगाते हैं गोट मोहम्मद तैयब थेबू खां हबीबुल्ला भाई तुम्हारा चयो है तुम्हारा शो ढो भलो है तुम्हारा डो हाल अवाल जी प्रोडक्ट बुधाया थी लगाया है कौन लगाया है अगर लगाया था तो बुधायो बाबा किथे पहुंचायो गाल किथे पहुंची जी असा अगते जेको आ न त यो समझी सकूं त केड़ा केड़ा असांजा लिसनर आहिनि जेके ही प्रोडक्ट लगाइन पिया जेके मां तव्हांखे ॿुधायां पई सो वाइट एज जा प्रोडक्ट आहिनि उन खां अलावा डी स्किन जा प्रोडक्ट आहिनि तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो वञो उतां वञी परचेज करे अचो ऐं पोइ लगायो पोइ सुहिणा सुहिणा थी वञो टाइम थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था वापसी जल्दी मोटी तव्हां ॾींदासीं तव्हां काॾे न वञिजो हिते वेठा हुजो मां ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय White Age Beauty Products and Skin Beauty Products.

0: It's 2:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Hemed.
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: सामीन नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
4: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार। सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डीहन जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
6: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने ऐं ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
5: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
6: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
5: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
6: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
5: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: मेरा नाम डॉक्टर आफ़ताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: This program is brought to you by
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
0: अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

हाँ भाई, ये फीलिंग तब की है। वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और प्रोग्राम सुन रहे हैं। व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। ओके जनाब, सो आप लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था कि क्या आप अपनी पुरानी तस्वीरें देखकर हंसते हैं, क्या आपको खुद पर हंसी आती है, बताएं जरा। और इसके साथ साथ आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं भैया, आपके बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं, आपकी इतनी सारी बातें, इतने प्यार भरे फीडबैक्स हैं। जल्दी से इसी बात पर पोस्ट को लाइक और शेयर कर दीजिए और दोस्तों को भी मेंशन कर दिया करें ताकि वो भी जान सके कि भाई जान खूबसूरतियां इस प्रोग्राम में आप लोगों को मिल रही हैं। वो ऐसे क्योंकि आप अपने करीबी जर्नलिस्ट पर जाते हैं, वहां से जाकर आप जो है ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करके आते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को बताते हैं। हाँ जी, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीड्स शामिल हैं और माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन से तैयार शुदा। और एक मजे की बात आपको बताऊं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये 2 रातों में आप लोगों को रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है। अगर आप 2 रातें इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएं ताकि आप भी खूबसूरत हो जाएं। लड़के लड़कियां सभी लगा सकते हैं, तो लगाइए जी नाइट क्रीम है, रात के टाइम लगाकर सो जाइए। और साथ में डी स्किन का फेस वॉश लाजमी यूज कीजिएगा और फेस वॉश आप 2 से 3 मरतबा जो है ना वो लगाइएगा, यानी कि सुबह को लगाइए, दोपहर को लगाइए और रात को लगाइए। यस भाईजान, ये पाकिस्तानी मूवी का गाना है तो पाकिस्तानी गाना हुआ। ओकरी चाचा खालिद कहते हैं, मैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम और फेस वॉश लगाकर खूबसूरत हो गया हूँ। क्या बात है जी, ऐसे ही चाचा लगाते रहिए और माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी जवानी तो बहुत ही अच्छी थी। वैसे वो जो ओल्ड वाला जमाना होता था तब फैशन कैसा होता था और लोग हेयर स्टाइल कैसे बनाते थे, उनका जो लाइफ स्टाइल था वो आज के टाइम से देखा जाए तो मुख्तलिफ था। और सच्ची बताऊं तो मुझे वो जो ओल्ड वाला टाइम था ना वो बड़ा अच्छा लगता है। टेक्नोलॉजी इतनी खास पसंद नहीं आती, तो पता नहीं ये क्या लॉजिक है कि मुझे ऐसा लगता है कि माँ काश पुराने दौरे में पैदा।

हाँ भाई, तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी महसूस हो जाएगा कि आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाएं। शहबाज हमारा शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आरजे बलाज कहते मैं भी लगाया, बिल्कुल तमाम भी लगायो बाबा, पाड़ी वारन के मिटन माइटन के दोस्तन के सबनी के बुधायो, घर वारन के बुधायो।

अच्छा ये जो मुझे लोग कह रहे ना कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम हमारे एरिया में नहीं मिल रही है, असांजे ॻोठ में न आहे, सिटी में न आहे, त तव्हां सभु कन खोले ॿुधो, हिकिड़ो नंबर तव्हांखे ॿुधाए ॾिनो, नंबर ते तव्हां राबितो कयो, सही आहे, कॉल कयो या फिर मैसेज कयो, हुननि खे ॿुधायो त तव्हां किथां खां असांजो प्रोग्राम ॿुधंदा आहियो ऐं किथां खां जेको आहे न तव्हां प्रोग्राम ॿुधी करे चाहियो था त बाबा असांजे बि क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल हुजनि, त तव्हां डायल कयो 03-15-799-0595 ही नंबर डायल कयो जे तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम बि अवेलेबल थी वञे ऐं वाइट एज जा प्रोडक्ट बि अवेलेबल थी वञनि, सभु मिलनि बाबा, सभु वठो। और ये अनवर भाई हमें सुन रहे हैं, अनवर भाई वेलकम करते हैं आपको, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ साथ, और हिदायतुल्लाह क्या कहते हैं?

अच्छा तारिक खान हमें सुन रहे हैं, तारिक आपको वेलकम करते हैं। और हैंची आदिल हुसैन कहते वाओ नाइस सॉन्ग, थैंक यू। जहीर अब्बास हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई। मुमताज सुलेखा का गाना आपने सुना होगा, आपने प्रोग्राम में लगा लिया है। और हैं जी दर्दी दिल कहती हैं कि टॉपिक मुझे बहुत हंसी आती है अपनी पुरानी फोटोज देखकर, सबसे ज्यादा अपने बालों पर हंसी आती है। क्यों ऐसा क्या था बालों में? और उन्होंने खाना वही गानों लगाए हो तुम

अच्छा इमरान अली बिरोही भाई वालेकुम अस्सलाम के दी छालन खुशायो अस्सलाम वालेकुम बाजी दुआ आहे तवा हमेशा मुस्कुराइंदा रहो असा भली रोंदा रहो लाडकाने का इमरान अली बिरोही ता छोरो बा ता में खिलंदा रहो असा जिया विलेज मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से मोहम्मद हारून संदीलो भाई रऊफ मक्सी का गाना सुनाए सुभाणे अज जो टाइम खत्म थी वयो आहे थोड़ो टाइम बचो ओ हे तरड़ो

अच्छा चाचा बिल्कुल इहा ॻाल्हि मूंखे ख़बर हुई, पर इहो बाद असां मतिलबु ॾिसो न, हिकिड़ो ही माहौल आहे असांजो, असां हिते एंटरटेनमेंट कयूं था, असां गाना हलायूं था, खिल भोग मज़ाक आहे, भई अहिड़े क़िस्म जो कोई बि टॉपिक अची वेंदो त पोइ मां सोचींदी आहियां त छा अहिड़े माहौल में उन अहिड़ियुनि चीज़ुनि जो ज़िक्र करणु मतिलबु मुनासिब लॻे थो। सो इन्हनि चीज़नि जे करे बसि मूं शायदि इन चीज़ खे थोरो आनियर न कयो, बाक़ी जेको अफ़सोस आहे उहो बिल्कुलु आहे, ऐं अलाह साईं तव्हांखे सबर ॾे। बाक़ी थोरो तव्हां बि महसूसु कंदा इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि खे, त असांजो हिकिड़ो माहौल आहे प्रोग्राम जो, त उन हिसाब सां थोरो मां सोचींदी आहियां त इहे सभु चीज़ूं जेके न त थोरियूं इंसान खे ख़्यालु करणु घुरिजे। मूं अगरि पर्सनली ॾिठो आहे या ॿुधो आहे, अगरि मां किथे अहिड़ी शइ ॾिसी वठंदी आहियां, ॿुधी वठंदी आहियां, त मूंखे पाण खे सुठो न लॻंदो, त मां इहो सोचींदी आहियां त अगरि मां इहो सभु कयां त पोइ ॿुधंदड़नि खे छा सुठो न लॻंदो, सम्झो।

0: ये गाना मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, तो अगर ये गाना जब भी प्रोग्राम में चलता है तो मैं सोचती हूँ कि बस ये एंजॉय करे. हाँ, ॾाढो सुठो वणो आहे वाला. अॼु खोड़ माण्हुनि जा कॉमेंट रहिजी विया हूंदा छो त अॼु वैसे ई कॉमेंट प्रोग्राम में इलाही सारा अची विया आहिनि. सो तव्हां सभिनी भाइरनि जूं भेनरुनि जूं सभिनी जूं मोहबतूं आहिनि बाबा ईअं प्रोग्राम में शामिल थींदा कयो. अव्हां जूं मोहबतूं आहिनि, हुन खां अलावा तव्हां वाइट एश ब्यूटी क्रीम जो जेको आहे न इस्तेमालु कयो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो, सभु प्रोडक्ट तव्हांजे ख़ूबसूरती खे वधाईंदा. ऐं हुन खां अलावा वरी इनशाला सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात थियण वारी आहे 1:30 बजे ताईं तव्हांजो असांजो साथ रहण वारो आहे. सो पंहिंजो उहो ई सारो ख़्याल रखंदा. किथे का ग़लती थी हुजे त मां माज़रत कयां पई. सही आहे. सो मोकिलानी नाहे बाबू सां सलामत सां सलामत अला हाफ़िज़ बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर.
1: इस बॉक्स ठंडक बढ़ाए और बिल भी आए कम.

0: इट्स 3 PM. दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय.
1: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
3: क्वेटा में फौजी ऑफिसरन के खिताब कंदे फील्ड मार्शल आसम मुनीर चवाए त हथियारबंद फौज हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे लाइ पुरज़म आहे. पाक फौज अवाम की हिमायत से दहशतगर्द के खात्मे लाइ पुरज़म आहे. पाकिस्तान की तरक्की की प्रोपेगेंडा या परडेही सरप्रस्ती मशीन दहशतगर्दी जरिए रोके नथो सकजे. जदीद जंगी तरीकेकार तेजी से तब्दील थी रहा है. फील्ड मार्शल जदीद टेक्नोलॉजी मल्टी डोमेन ऑपरेशन ट्रेनिंग फौज में गडियल सहकार से जोर भरियो.

28 तरमीम थींदी, निज़ाम तब्दील थींदो या वरी मार्च लाइ बि लॻी सघे थी। 28 आईनी तरमीम बाबति फ़ैसिलो पार्लियामेंट में वेठल माण्हुनि खे करणो आहे। असां पार्लियामेंट खां ॿाहिरि आहियूं। नौशर फिरोज में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अॻूणे वफ़ाकी वज़ीर मुर्तज़ा जतोई चयो आहे अपोज़िशन सूरतहाल नज़र आहे, हिकमत अमली आहे। ज़ाहिर नथा करे सघूं सिंध खे माफ़िया खां आज़ाद करण वारो जदोजहद जारी रखंदुसि। मुर्तज़ा जतोई खां भाउ ख़िलाफ़ 8 केसनि जी ॿुधणी 11 जून ताईं मुलतवी।

0: सिंध में पाणीअ जी शदीद खोट बावजूद पंजाब तरफ़ा ज़बरदस्ती खुलियल गैर क़ानूनी लिंक कैनाल ज़रिए पाणीअ जी खणत जारी। सिंध जा चूंडल नुमाइंदा आपाशी खाते मामले ते ख़ामोशी इख़्तियार करे वरिती। ज़रियनि मुझे पंजाब सी जे लिंक कैनाल ज़रिए 10,000 क्यूसिक्स ऐं टीपी लिंक कैनाल ज़रिए 8,122 क्यूसिक्स पाणी गुज़िरियल 4 ॾींहनि खां रोज़ानी बुनियादनि ते खणी रहियो आहे। सिंध में पाणी जी सख़्त खोट बावजूद इरसा में मौजूद सिंध जे नुमाइंदनि ऐं आपाशी खाते कंहिं बि क़िस्म जो एहतजाज न कयो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
5: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
6: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
7: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अवां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
7: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
8: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर

0: सर्जन 24 कलाक मौजूद हुंदा
1: जिते डॉक्टर आफताब एवान जनरल फिजिशियन रोजानो मंजत 2 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा गायनाकोलॉजिस्ट आई औरतन जे बीमारिन जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
0: आई गायनाकोलॉजिस्ट आई औरतन जी बीमारिन जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफताब
1: आई डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंजन 2 वगे खां शाम 4 वगे ताई डॉक्टर जहूर अहमद मेमण दिमागी बीमारिन जो माहिर मंजन 12 वगे खां 1 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा
0: आई डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरोफिजिशियन राचर जे दी मंजन 2 वगे खां 3 वगे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद
1: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नजद नोतकाड़ी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 03125257866।
1: जी हा, 2315525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: 15 p.m.
1: This time chat is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
5: सिंध के दिल से निकली आवाज,
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: करती हूँ, जलाल हलायो, उर्स बुधायो, फौजिया हलायो, ईटीसी। ऐसा ही होता है ना, हमारे लिसनर जब भी कॉल पे आते हैं। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जनाब, वेलकम कहेंगे। कौन बात कर रहा है?
1: बिलाल का है।
0: भली कर चूं था दादा, तमा के क्या कहेंगे टॉपिक के हवाले से?
1: अभी क्या चुका था आए मुलाकात तो लाया आया थे।
0: अच्छा, सबको सलाम दे दें आप ऐसा करें।
1: अरे आए पांच बार बच्चा लगा जा रही क्यों था
0: जी? ठीक है
1: दोस्त ने
0: बुदायो जी
1: और राशिद भुट्टो।
0: ठीक है राशिद
1: भुट्टो
0: सबनी बारा वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू, आपने हमें याद किया, प्रोग्राम का हिस्सा बने और सबको अपने होने का एहसास दिलाया। और
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
5: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखे। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
5: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
5: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूदु हूंदा,
4: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
5: ऐं गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
4: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझन 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं। डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
5: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
4: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी साउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
4: 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: थैंक यू। ओके ओके जी अला जी, सॉन्ग कौन सा वाला? आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, जो दोबारा बताइए। चले मैं ब्रेक के बाद प्ले करूंगी। 4 बजे के बाद प्रोग्राम कनेक्ट होता है सखर में या नहीं?
1: नहीं होता सखर।
0: चले मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ, कल आपको सुनवाऊंगी प्रोग्राम के पहले घंटे बताइएगा, ठीक है? ओके अल्लाह हाफिज। ओके जी, और बिना वक्त जाया किए हम जाएंगे ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आपको अगेन ज्वाइन करते हैं।
2: It's 4 PM. This time check is brought to you by.
3: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

अमेरिका सां ॻाल्हियुनि जो मक़सदु हथियार फिटा करणु नाहे, ईरान जे मफ़ादनि, इज़त ऐं वक़ार जो तहफ़ुज़ कयो वेंदो। ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियान चयो आहे त तेहरान कंहिं बि सूरत में ईरान ऐं ईरानी अवाम जे हक़नि ते हथु न खणंदो। समूरी तवानाई सां गॾु ईरानी अवाम जी ख़िदमत कंदा रहंदासीं। ईरानी ख़ातिमुल अंबिया ब्रिगेड चयो आहे त ईरानी फ़ौज जो हथ बि ट्रिगर ते आहे, हमिलो थियो त वॾे पैमाने ते जवाबी कार्रवाई कई वेंदी। तकड़ी फैसलाती ताक़तवर वॾे पैमाने ते जवाबी कार्रवाई कई वेंदी।

0: मां गुलदस्तो भी पेश कयो। मौलाना फजल रहमान चयो त सियासी धुर जे लाइ कंदो अठावी तरमीम थींदी, निज़ाम तब्दील थींदो या वरी माशाला बि लॻी सघे थी। अठावी आईनी तरमीम बाबति फ़ैसिलो पार्लियामेंट में वेठल माण्हुनि खे करणो आहे। असां पार्लियामेंट खां ॿाहिरि आहियूं। नौशहरो फिरोज़ में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर मुर्तज़ा जतोई चयो आहे त अपोज़िशन जी सूरतहाल ते नज़र आहे, हिकमत अमली जोड़ी आहे, माफ़िया खां आज़ाद कराइण वारी जिदोजहद जारी रखंदुसि। मुर्तज़ा जतोई ऐं संदसि भाउ ख़िलाफ़ 8 केसिस जी ॿुधणी 11 जून ताईं मुलतवी। सिंध में पाणीअ जी शदीद खोट बावजूद पंजाब तरफ़ां ज़बरदस्ती खुलियल गैर कानूनी लिंक कैनाल ज़रिए पाणीअ जी खणत जारी। सिंध जा चूंडल नुमाइंदा आबपाशी खाते मामले ते ख़ामोशी इख़्तियार करे वरिती। ज़रियुनि मुझे पंजाब सीजे लिंक कैनाल ज़रिए 10,000 क्यूसिक ऐं टीपी लिंक कैनाल ज़रिए 8,122 क्यूसिक पाणी गुज़िरियल 4 ॾींहनि खां खणी रहियो। सिंध में पाणीअ जी सख़्त खोट बावजूद इरसा में मौजूद सिंध जे नुमाइंदनि ऐं आबपाशी खाते कंहिं बि क़िस्म जो एहतजाज न कयो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फरायन सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द अज जल्द काबू पाया जा सके।
4: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: खुशखबरी खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
6: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर पेशन कया वञनि था, जंहिं में
7: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने ऐं ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
6: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी,
7: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब,
6: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
7: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा, डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03132525786
1: जी हा 2315525786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
6: सुनते रहो GFM 90.4।

और नेक्स्ट सेगमेंट है रिवर्स गियर, इसमें हम बहुत ही प्यारे प्यारे से ओल्डी सॉन्ग आपको सुनवाते हैं। और ये प्यारे सदाबहार जो गीत होते हैं ना, बहुत से जो लोग हैं उनकी जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा रहे होंगे माजी में, तो आइए माजी की यादें ताजा करते हैं। क्वीन ऑफ वॉइस यानी के यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, आप समझ गए होंगे किन की बात हो। और ये जो है ना वन एंड ओनली एवर ग्रीन सिंगर है, इनका गाना आप कभी भी किसी भी मौसम में किसी भी मूड में सुने, मूड फ्रेश हो जाता है, ये मेरी आजमाई भी बात है। तो आइए जनाब एक प्यारा सा गीत सुनवाते हैं आपको, आप इंजॉय कीजिए इस प्यारे से गीत को। इस ट्रैक के बाद आपको हम दोबारा ज्वाइन करते हैं ब्रेक के बाद। फिलहाल मलका तरन्नुम नूर जहां का प्यारा सा गीत आप सबके लिए।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: सामीन और नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
3: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: खुशखबरी खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड प्यूरीफिटेड,
5: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
6: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
5: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
6: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
5: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
6: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
5: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 247-3241-230
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है
4: सुनते रहो GFM 90.4

शहर से हटकर हुदूद शहर के बाद वो मुस्कुरा के मिले भी तो कौन देखता है, जिस आंख में कोई चेहरा न कोई अक्स तलब, वो आंख जल के बुझे भी तो कौन देखता है, हजू में दर्द में क्या मुस्कुराई ये के यहाँ, खिजा में फूल खिले भी तो कौन देखता है, मिले बगैर जो मुझसे बिछड़ गया मोहसिन, वो रास्ते में रुके भी तो कौन देखता है, हजू में शहर से हटकर हुदूद शहर के बाद वो मुस्कुरा के मिले भी तो कौन देखता है। मोहब्बतों पे बहुत एतमाद क्या करना, भुला चुके हैं उसे फिर से याद क्या करना, वो बेवफा ही सही उस पे तोहमतें कैसी, जरा सी बात पे इतना फसाद क्या करना, कुछ इसलिए भी मैं पिसा हुआ हूँ मक्तल से के बहर माल गनीमत जहाद क्या करना, निगाह में जो उतरता है दिल से क्यों उतरे, दिलो निगाह में पैदा तजाद क्या करना, मैं उसलिए भी अब तक छू न सका मोहसिन, मैं इसलिए उसे अब तक छू न सका मोहसिन, वो आईना है उसे संग जाद क्या करना, मोहब्बतों पे बहुत एतमाद क्या करना, भुला चुके हैं उसे फिर भी याद क्या करना। वेल जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और प्रोग्राम में आपसे

0: बेटी बददिल होकर मैं के आ गई। बाप ने कहा तुम्हारे हाथ का खाना खाए बहुत दिन हो गए, आज मेरे लिए एक अंडा एक आलू उबाल दो, साथ में गर्मा गर्म काफी, लेकिन 20 मिनट तक चूल्हे पर रखना। जब तैयार हो गया तो कहा आलू चेक कर लो, ठीक से गलकर नरम हो गया है, अब अंडा छूकर देखो हार्ड बॉयल हो गया, काफी चेक करो रंग और खुशबू आ गई। बेटी ने चेक करके बताया सब परफेक्ट है। बाप ने कहा देखो तीनों चीजों ने गर्म पानी में यकसा वक्त गुजारा, बराबर की तकलीफ बर्दाश्त की। आलू सख्त होता है, इस आजमाइश से गुजर कर नर्म हो गया। अंडा नर्म होता है, गिरे तो टूट जाए, लेकिन अब सख्त हो गया है और इसके अंदर का लिक्विड भी सख्त हो गया है। काफी ने पानी को खुश रंग और खुश जायका खुशबूदार बना दिया है। तुम क्या बनना चाहोगी, आलू अंडा या काफी? ये तुम्हें सोचना है, या खुद तब्दील हो जाओ या किसी को तब्दील कर दो, ढल जाओ या ढाल दो, यही गुजारने का फन है। और सीखना, अपनाना, अपनाना अपना के तब्दील होना, तब्दील करना, ढालना, ढल जाना ये इसी वक्त मुमकिन है जब निभा करने का आजम हो। कम हिम्मत मंजिल तक पहुंचता है, मंजिल तक नहीं पहुंचता बल्कि रास्ते में हलाक हो जाता है। तो एक इंसान मिलकर 10 लोगों को चेंज यकसर नहीं कर सकता, लेकिन अपनी कुछ हैबिट्स पर काबू पाकर उन 10 लोगों के दिलों में अपनी बेहतरीन जगह बना सकता है। अक्सा कहती हैं गुल वाह बहुत खूब, थैंक यू गुल। और मैंने जब भी कल कहा है आपने नहीं कहा, अच्छा अभी तक, हाँ जी बिल्कुल, अभी फिलहाल ये वाले प्रोग्राम्स जो है मैं नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, कुछ टाइम के बाद कोशिश करेंगे। जिक्र शबे फिराक से वहशत उसे भी थी, मेरी तरह किसी से मोहब्बत उसे भी थी, मुझको भी शौक था नए चेहरों की दीद का, रास्ता बदल के चलने की आदत उसे भी थी। उस रात बहुत देर तक रहा महवे गुफ्तगू, मसरूफ मैं भी कम था, फरागत उसे भी थी, सुनता था वो भी सबकी पुरानी कहानियां, ताजा रफाकतों की जरूरत उसे भी थी। अब मुझसे बिछड़ के शहर में घुल मिल गया वो शख्स, हालांकि शहर भर से रकाबत उसे भी थी, वो मुझसे बढ़ के जब्त का आदि था जी गया।
1: It's 5 PM. This time check is brought to you by.
2: जने माँ पांजो ख्याल रखन्दी आहे, त सेहत नसलन ताई हलन्दी आहे। ही पेगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वयो।
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चयो आहे त हथियारबंद फ़ौज हर क़िस्म जी दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ पुरज़म आहे। पाक फ़ौज अवाम जी हिमायत सां दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ पुरज़म आहे। पाकिस्तान जी तरक़ी खे प्रोपेगेंडा या परॾेही सरपरस्ती में थींदड़ दहशतगर्दी ज़रिए रोके नथो सघे। जदीद जंगी तरीक़ेकार तेज़ीअ सां तब्दील थी रहियो आहे। फील्ड मार्शल जदीद टेक्नोलॉजी, मल्टी डोमेन ऑपरेशन ऐं टिन्ही फ़ौजनि में गडि॒यल सरकार ते ज़ोर भरियो। सिंध असेंबली सरकारी नौकरियुनि लाइ उमिरि जी हद में 15 साल रियायत ॾियण वारो ठहराउ रद्द करे छॾियो। MQM जे शबीर कुरैशी पारां पेश कयल ठहराउ जी हुकूमत मुखालफत कई। घरू अज़ीज़ ज़ारा सलंजार चयो आहे त सुप्रीम कोर्ट 15 सालनि वारी उमिरि जी रियायत ख़तम करे छॾी आहे, रुगो 5 साल रियायत ॾेई सघजे थी। अदालती फ़ैसिले ते सीनियर मेंबर चयो आहे त पीपल्स बस सर्विस बि समूरी सिंध में हलाई वेंदी, कराची जी बहितरीअ ते बि ध्यानु आहे।

0: getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran. And we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, some others, if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied.
1: अमरीकी सदर ट्रंप जो सऊदी अरब कतर ऐं यूएई जी दरख़्वास्त ते ईरान ते रिथियल हमिलो रोकण जो ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त सऊदी अरब जे वली अहद कतर जे अमीर ऐं गडियल अरब अमारात जे सदर ईरान ते हमिलो रोकण जी दरख़्वास्त कई आहे, जंहिं ते ईरान ते अॼु रिथियल हमिलो 2 खां 3 ॾींहनि लाइ मुलतवी कयो आहे। लॻे थो ईरान सां डील जो सुठो मौको आहे। अहिड़ो माहिदो चाहियूं था जेको न रुगो अमरीका पर विच ओभर समेत समूरनि मुल्कनि लाइ क़बूलियत जो हुजे। अमरीका सां ॻाल्हियुनि जो मक़सद हथियार पिटा करण आहे। ईरान जे मफ़ादनि, इज़त ऐं वक़ार जो तहफ़ुज़ कयो वेंदो। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त तेहरान कंहिं बि सूरत में ईरान ऐं ईरानी अवाम जे हक़नि तां हथ न खणंदो। समूरी तवानाई सां गॾु ईरानी अवाम जी ख़िदमत कंदा रहंदासीं। ईरानी ख़ातिम उल अंबिया ब्रिगेड जो चवण आहे त ईरानी फ़ौज जो हथ बि ट्रिगर ते आहे। हमिलो थियो त वॾे पैमाने ते जवाबी कार्रवाई कई वेंदी। तकिड़े फैसलाइती ताक़तवर ऐं वॾे पैमाने ते जवाबी कार्रवाई कई वेंदी। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो कतरी हमन सभ सां फोन ते राब्तो। बितरफ़न लाॻापन ऐं विच ओभर जी तब्दील थींदड़ सूरतयाल ते ॻाल्हि ॿोल। ॿिन्ही अॻवाननि जो ख़िते जे अमन ऐं इस्तेहकाम लाइ सिफ़ारती कोशिशूं जारी रखण ते ज़ोर। शहबाज़ शरीफ चयो त पाकिस्तान ख़िते में जटादार अमन जे क़याम लाइ सिफ़ारती कोशिशूं जारी रखंदो।

सीनियर वजीर शर्जीली नाम अहमद नासिर शाह एबीएनडी जे यूआई सरबराह मौलाना फजल रहमान सां कराची में मुलाकात। सूबाई वजीर मौलाना फजल रहमान के बिलावल भुट्टो जरदारी तरफा

0: थी। 18वीं तरमीम बाबत फैसलो पार्लियामेंट में वेठल माण्हुनि खे करणो आहे। असां पार्लियामेंट खां ॿाहिरि आहियूं। नौशेरो फिरोज में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अॻूणे वफ़ाकी वज़ीर मुर्तज़ा जतोई चयो आहे त पोज़ीशन जी सूरतहाल ते नज़र आहे। हुकूमत अमली जोड़ी आहे, ज़ाहिर नथा करे सघूं। सिंध खे माफ़िया खां आज़ाद करण वारी जिदोजहद जारी रखंदसि। मुर्तज़ा जतोई ऐं संदसि भाउ ख़िलाफ़ 8 केसनि जी ॿुधणी 11 जून ताईं मुलतवी। सिंध में पाणी जी शदीद कोट बावजूद पंजाब तरफ़ां ज़बरदस्ती खोलियल गैर कानूनी लिंक केनाल ज़रिए पाणी खणत जारी। सिंध जा चूंडियल नुमाइंदनि ऐं आबपाशी खाते मामले ते ख़ामोशी इख़्तियार करे वरिती। ज़रियनि मूजिब
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
4: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: खुशखबरी खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अवां जे पंहिंजे शहर माटली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
6: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
7: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, अंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
6: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
7: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
6: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
7: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
6: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
0: रोजानू सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतन ए बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
0: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347-3-41-230
2: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोइ जीए एफएम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफएम रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 03125252786
2: जी हा 3135525786
3: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़

0: It's 5:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: सिंध के माथे का झूमर
4: GFM 88 नेटवर्क
5: सिंध की आवाज.
6: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे?
7: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का.
8: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत.
9: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे. सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
8: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे.
8: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे.
9: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
8: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो. असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे. वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920.
9: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली.
8: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
9: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
8: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा. गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
9: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
8: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं. डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
9: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा. डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद.
8: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली.

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाए 2347-3141-230 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह, वल्द हजरत मौलाना सैयद हुसैन मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो, इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हजरात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
2: अम्मा, हेडिस मुके छा मिलियो
3: छा मिलियो पुत्र।

0: हिकु ॾींहुं हिन छोकिरे जूं जासूसी माराईंदियूं असांखे
1: पता लगाता हूं क्या राज है जसूस जसूस
2: असांजा पाणी साफ़ न आहे तंहिंजे करे त असां बीमार था थियूं असांखे पाणी ऐं सफ़ाई ॿिन्हिनि जो ख़्यालु रखणु घुर्जे
0: केॾो सियाणो पुटु आहे मुंहिंजो
2: बाबा इहो ई जासूस तव्हांखे बचाईंदो
3: साफ़ पाणी महफ़ूज़ ज़िंदगी दस्तनि खां बचाओ ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो
4: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
5: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे
6: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
7: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
7: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूदु आहे
8: अव्हां जे इतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
7: खुशखबरी खुशखबरी अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था जंहिं में
8: सीज़र नॉर्मल डिलीवरी आंडे पिथे मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूदु हूंदा
7: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
8: ऐं गायनाकोलोजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
7: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347-3141-200
2: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

0: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
1: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
0: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
1: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
0: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
1: अवां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713800392।
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
1: सीज़र नॉर्मल डिलीवरी आंडे पिथे मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
0: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
1: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
0: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझन 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
1: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
0: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोटिया जो दौरो कौमी खुदमुख्तियारी की तहफ़ुज़ अमन अमान इस्तेहकाम लाइ पाक फौज के किरदार की वाखाण पाक फौज के पेशे वराणन सलाहियतन ऑपरेशनल तैयारियों की भी वाखाण वज़ीर आज़म खिताब कंदे चयो आहे त हक की जंग में पाक फौज दुश्मन की जारियत के नाकाम बणायो। बलोचिस्तान में जटादार अमुन लाइ अवाम दोस्त पॉलिसी ए बेहतर हुक्मरानी अंटर आहे। पाकिस्तान की तरक्की रोकण की कोशिश कंदड़ सदाई नाकाम थींदा। कोटिया में फौजी ऑफिसरन के खिताब कंदे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चयो आहे त हथियारबंद फौज हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे लाइ पुरज़म आहे। पाक फौज अवाम की हिमायत सां दहशतगर्दी के खात्मे लाइ पुरज़म आहे। पाकिस्तान की तरक्की के प्रोपेगेंडा या परदेही सरपरस्ती में थींदड़ दहशतगर्दी जरिए रोके नथो सघिजे। जदीद जंगी तरीकेकार तेजी से तब्दील थी रो है। फील्ड मार्शल जदीद टेक्नोलॉजी मल्टी डोमेन ऑपरेशन टिन्ही फौजन में गडल सहकार से जोर भर।
2: सिंध असेंबली में सरकारी नौकरी लाए उम्र की हद में 15 साल देने वो ठहराव रद्द कर छो। एमकेएम के शबीर कुरैशी पारा पेश कल ठहराव की हुकूमत मुखालफत कई। घर वजीर सियाल हसन अंजार सुप्रीम कोर्ट 15 साल वाली उम्र की रियायत खत्म कर छी है। रुगो 5 साल रियायत दई सकजे थी। अदालती फैसले से अमल कर पाबंद आयु। सीनियर वजीर शजीर इनाम अहमद पीपल्स बस सर्विस भी समूरी सिंध में हराई वेंदी। कराची की बेहतरी से भी ध्यान आ।
3: Getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied.
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो सऊदी अरब कतर ऐं यूएई जी दरख्वास्त ते ईरान ते रिथल हमलो रोकण जो ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त सऊदी अरब जे वली अहद कतर जे अमीर ऐं गडियल अरब अमारात जे सदर ईरान ते हमलो रोकण जी दरख्वास्त कई हुई, जैं ते ईरान ते अॼु रिथियल हमलो 2 खां 3 ॾींहनि लाइ मुल्तवी कयो। लॻे थो त ईरान सां डील जो सुठो मौक़ो आहे। अहिड़ो मुआदो चाहियूं था जेको न रुगो अमरीका पर विच ओभर समेत समूरनि मुल्कनि लाइ क़बूलियत जोॻो हुजे।
2: अमरीका सां ॻाल्हियुनि जो मक़सदु हथियार पिटा करण नाहे। ईरान जे मफ़ादनि इज़त ऐं वक़ार जो तहफ़ुज़ कयो वेंदो। ईरानी सदर मसूद पिज़िशकियान चयो आहे त तेहरान कंहिं बि सूरत में ईरान ऐं ईरानी अवाम जे हक़नि तां हथ न खणंदो। समूरी तवानाई सां गॾु ईरानी अवाम जी ख़िदमत कंदा रहंदासीं। ईरानी ख़ातमुल अंबिया ब्रिगेड चयो आहे त ईरानी फ़ौज जो हथ बि ट्रिगर ते आहे। हमलो थियो त वॾे पैमाने ते जवाबी कार्रवाई कई वेंदी। तकड़ी फैसलाइती ताकतवर ऐं वॾे पैमाने ते जवाबी कार्रवाई कई वेंदी।
1: वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो कतरी हमनसब सां फोन ते राबतो। बेतरफ़न लागापन ऐं विच ओभर जी तब्दील थींदड़ सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठ। ॿिन्ही अख़बारनि जो खिते जे अमुन ऐं इस्तेहकाम लाइ सफ़ारती कोशिशूं जारी रखण ते बि ज़ोर। शहबाज़ शरीफ चयो त पाकिस्तान खिते में जटादार अमुन जे क़याम लाइ सफ़ारती कोशिशूं जारी रखंदो।
2: सीनियर वज़ीर शजीर इनाम अहमद नासिर शाह ऐं ॿियनि जी जे यू आई सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान सां कराची में मुलाक़ात। सूबाई वज़ीरनि मौलाना फज़लुर रहमान खे बिलावल भुट्टो ज़रदारी तरफ़ां गुलदस्तो बि पेश कयो। मौलाना फज़लुर रहमान चयो त सियासी धुरियुनि खे आइन पार्लियामेंट ऐं जमहूरियत जे तहफ़ुज़ लाइ गॾु थियणो पवंदो।
4: निज़ाम तब्दील थींदो या मां इहो चयो त माशाल्लाह लॻी सघे थी। غیب جو علم اللہ کے چھا تھو خبر خدا کے پر 28 تربی نظام کی تبدیلی یا یوں گھر میں سب ہلن پہ خبر خدا کے پر 28 تربی

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फरायंद सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
3: किरु शोक होना तो खे मुझे रो पाए तैयार थे जो
4: आज भी हसी
3: थोड़ो पाए तो देखार
5: न माँ मा थकी पई आया
3: न पुट ये थकना है रत की कमी है दिस्ता केडो न फिको थी हुआ है तुझो चेहरो
5: छा कया मां
3: 6 महीना थी वैन पुट तू उम्मीद सा ही अई हाने वनी तो शुरू कई है फौलाद जी गोरी कच्चू भाजू खाइंदी कर पुट तोखे खबर है असा त मेवन जो खलू खाई विंदा हुआ से उनन सा ही त खून ठांदो है इन सा न तोखे कुछ थिंदो अ नई बा रखे पुट हाने तू मां थण वाली है पंहिंजो ख़्यालु रखणु ॿियनि खां बि वधीक ज़रूरी आहे।
4: मेरी बात तेरे ज़िम्मे अब ये तुझको निभानी है।
6: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
7: खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अवां जे पंहिंजे शहर माकली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
7: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
8: सीज़र नॉर्मल डिलीवरी अंडे पिते मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
7: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
8: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
7: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
8: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
7: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी।

0: ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
2: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़श ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
2: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 03125252786।
2: जी हा, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
2: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अवांजे पंहिंजे शहर माथली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
1: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
2: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, अंडे, पिथे, मसाने ऐं ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
1: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
2: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं। डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
2: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
1: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

0: ॿार जे सोचण जो वक़्तु अचे त ॿ साल तूं सोचजांइ, बसि इहा ॻाल्हि कम ईंदी।
1: जॾहिं नई माउ बणजण जो डपु हुजे त कंहिं पुराणीअ जी ॻाल्हि ॿुधो। हमल जे दौरान रत जी घटिताई खे बि नज़रअंदाज़ न करियो। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: खुशखबरी खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
3: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
3: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, अंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
2: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा, गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी,
3: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
2: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
3: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा, डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
2: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींद में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश खबरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
2: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां खिदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
1: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
2: सीज़र नॉर्मल डिलीवरी अंडे पिथे मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
1: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
2: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
2: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
1: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।
3: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सैयद ज़ियाउद्दीन शाह वल्द हजरत मौलाना सैयद हुसैन मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो। इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात पिलाए जाएंगे, मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हजरात से कि इन लम्हात से फ़ायदा उठाए।
5: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321230।
7: किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शि ख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडी रोड।
8: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राबितो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूद।

0: आहे. अधिक मालूमात लाय मोबाईल नंबर 0371800392 0.
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली.
0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पेंजे शहर मातली में अवां जे जातल सुनातल एवान मेडिकल सम जा ऑपरेशन कया वनन ता जे में
1: सीजर, नॉर्मल डिलीवरी, अंडे, पित्ते, मसाने बया मुख्तलिफ किस्म जा ऑपरेशन कया वनन ता जे लाए मुख्तलिफ किस्म जा माहिर डॉक्टर ए सर्जन 24 कलाक मौजूद हुंदा
0: जिते डॉक्टर आफताब एवान जनरल फिजिशियन रोजानो मंजत 2 वगे का रात 8 वगे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा गायनेकोलॉजिस्ट आई औरतन जे बीमारिन जी माहिर डॉक्टर राहिला पटी
1: आई गायनेकोलॉजिस्ट आई औरतन जी बीमारियन जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफताब
0: आई डॉक्टर हमीदुल्लाह पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंजन 2 वगे का शाम 4 वगे ताई डॉक्टर जहूर अहमद मेमण दिमागी बीमारियन जो माहिर मंजन 12 वगे का 1 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा
1: आई डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिजिशियन राचर जे दी मंजन 2 वगे का 3 वगे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद.
0: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नजद नोतकाड़ी चौक बदीन रोड मातली.
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है.
3: सुनते रहो जी एफ एम 90.4.

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिक्योरिटी फोर्सेज जो उत्तर वजीरिस्तान में ऑपरेशन, 22 भारतीय हामी खारजी दहशतगर्द मारजी व्याप। ISPR मूजिब उत्तर वजीरिस्तान जे इलाइक़े शिवा में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जायती अंदाज में निशानो बनाए वो। फायरिंग जी डेवट में भारतीय हामी 22 खारजी दहशतगर्द मारजी व्या, हथियार ए बारूदी मवाद भी हथ कयो वो। पाकिस्तान पैंजी खुद मुख्तारी ए सलामती जे दिफा लाए हर कीमत अदा कंदो। ऑपरेशन गजबल लग पूरी ताकत ए अज़म सा जारी आए। दहशतगर्दन जी पनागाहन ए मददगार ढांचन के खत्म कयो वेंदो। हक जी जंग दौरान पाक फौज दुश्मन जी अगराई के नाकाम बनायो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा जे दौरे दौरान इदारे जी फैकल्टी ए तरबियत हेठ ऑफिसर के खिताब। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज पहुंचण ते फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर वज़ीर आज़म जी आजियां कई। वज़ीर आज़म पारां कौमी खुदमुख्तारी जे

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: भारत पाकिस्तान की मुखलिस और संजीदा गालन वरी आछ के नजरअंदाज करे छिकतान अग्राई तशद्दुद जो रस्तो अख्तियार कयो। हक की जंग में पाक फौज दुश्मन के मोटोड़ न विसरंदड़ सबक सेखारियो। हाने दुश्मन कदें भी पाकिस्तान डां बुरी नजर से डिसण की हिम्मत न कंदो। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज की फैकल्टी और तरबियत हेठ ऑफिसर के खिताब। शहबाज शरीफ चयो तो पान के ताकतवर समझंदड़ दुश्मन के जंग का पोए सफारदी मैदान में भी नाकामी नसीब थी और पाकिस्तान जो मौकिफ दुरुस्त साबित थो। दुनिया भारत के कूड़े बयानी के रद्द कर पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के नतीजे में अमरीका और ईरान विच में जंग बनी थी।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
3: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ए शिफाफ पानी सेहतमंद जिंदगी की जमानत।
4: अवाजे पेंजे शहर माथली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल का खिदमत करे रहयो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पानी की बोतल
4: 6 लीटर पानी की बोतल ए बियो पानी जो बोतलू
3: 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पानी की बोतल
4: 6 लीटर पानी की बोतल ए बियो पानी जो बोतलू मुतारिफ कराए रहयो आहे।

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पेंजे शहर मातली में अवां जे जातल सुन्यातल एवान मेडिकल सेंटर में हाने हर किस्म जा ऑपरेशन कया वनन ता जे में
1: सीजर नॉर्मल डिलीवरी अंडे पिते मसाने बे मुख्तलिफ किस्म जा ऑपरेशन कया वनन ता जे लाए मुख्तलिफ किस्म जा माहिर डॉक्टर ए सर्जन 24 कलाक मौजूद हुंदा
0: जिते डॉक्टर आफताब एवान जनरल फिजिशियन रोजानो मंजत 2 बजे खां रात 8 बजे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा गायनेकोलॉजिस्ट आई औरतन जे बीमारिन जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
1: आई गायनेकोलॉजिस्ट ए औरतन जी बीमारिन जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफताब
0: आई डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंजन 2 बजे खां शाम 4 बजे ताई डॉक्टर जहूर अहमद मेमण दिमागी बीमारिन जो माहिर मंजन 12 बजे खां 1 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदा
1: आई डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिजिशियन राचर जे दी मंजन 2 बजे खां 3 बजे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद
0: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नजद नोतकारी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03132525786
1: जी हा 2315-2575-786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: It's 8:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: Sindh ki ho to aawaz bhi Sindh ki hai. GFM 88 Network. GFM 88 Network. Sindh ki aawaz.
4: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
5: अव्हांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
4: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे
5: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
4: खुशखबरी खुशखबरी अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था जंहिं में
5: सीज़र नॉर्मल डिलीवरी आंडे पिथे मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूदु हूंदा
4: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
5: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
4: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे

0: ॿिए ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा।
1: डॉक्टर कंबर लिगारी, जनरल सर्जन, एसोसिएट प्रोफेसर, लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, हैदराबाद।
2: एड्रेस: एवान मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
2: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है
4: सुनते रहो GFM 90.4

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
3: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड प्यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
3: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
2: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी,
3: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब,
2: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
3: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
2: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाए 2347-3141-200 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713030।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
1: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
2: सीज़र नॉर्मल डिलीवरी आंडे पिते मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूदु हूंदा,
1: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
2: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंद 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
2: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंद 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
1: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश खबरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
3: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
6: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: फौज दुश्मन खे मोह टोड़ ऐं न विसरंदड़ सबक सेखारियो। हाणे दुश्मन कॾहिं बि पाकिस्तान ॾांहुं बुरी नज़र सां ॾिसण जी हिमत न कंदो। ईरान तकरार पूरे खिते खे गैर यकीनी वारी सूरत हाल ऐं मुआशी कमज़ोरीअ में धिके छॾियो आहे। पाकिस्तान जे सफ़ारती कोशिशुनि जे नतीजे में ई अमरीका ऐं ईरान जंगबंदीअ जो ऐलान कयो। वज़ीर आज़म जो कोइटिया में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज जे फैकल्टी ऐं तरबियत हेठि आफिसरनि खे ख़िताब। शहबाज शरीफ चयो आहे त पाण खे ताक़तवर सम्झंदड़ दुश्मन खे जंग खां पोइ सफ़ारती मैदान में बि शिकस्त नसीब थी आहे ऐं पाकिस्तान जे मौक़िफ़ खे दुनिया तस्लीम कयो। पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम जे हक़नि जी लाॻीतो वकालत कई आहे। वालारल कश्मीर वासियुनि जी इख़लाक़ी, सियासी ऐं सफ़ारती हिमायत जारी रखंदासीं। अफ़गान तालिबान रजीम खे दहशतगर्द टोलनि ख़िलाफ़ असराइता क़दम खणणा पवंदा।
1: बलोचिस्तान में जटादार अमन लाइ अवाम दोस्त पॉलिसी ऐं बहितर वारी अंटर आहे। पाकिस्तान जी तरक़ी रोकण जी कोशिश कंदड़ सदाई नाकाम थींदा। कोइटा में फौजी आफिसरनि खे ख़िताब कंदे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चयो आहे त हथियारबंद फ़ौज हर क़िस्म जी दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ पुरज़म आहे। पाक फ़ौज अवाम जी हिमायत सां दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ पुरज़म आहे। पाकिस्तान जी तरक़ी खे प्रोपेगेंडा या परडे॒ही सरपरस्ती में थींदड़ दहशतगर्दीअ ज़रिए रोके नथो सघजे। जदीद जंगी तरीक़ेकार तेज़ीअ सां तब्दील थी रहियो आहे। फील्ड मार्शल जदीद टेक्नोलॉजी, मल्टी डोमेन ऑपरेशन ऐं टिन्ही फ़ौजनि में गडि॒यल सहकार ते ज़ोर भरियो।
0: ईरान ते ॿीहर हमलनि जी ज़रूरत पइजी सघे थी। ईरानी क़यादत डील लाइ मिंथूं करे रही आहे। डील न थी त हमलनि खां सवाइ ॿियो को रस्तो न बचंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी व्हाइट हाउस में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल। डोनाल्ड ट्रंप चयो त ईरान खे नवां एटमी हथियार ठाहिण लाइ वक़्त नथा ॾेई सघूं। ईरान वटि अञा बि जवाबी कार्रवाई जी थोरी सलाहियत मौजूद आहे। ईरान आबनाए हुर्मस खे 47 वरनि खां सक्रिय क़ौम तौर इस्तेमाल करे रहियो आहे। अहिड़ी सूरत हाल खे वधीक बर्दाश्त नथो करे सघिजे।

0: अमेरिका सां ॻाल्हियुनि जो मक़सदु हथियार फिटा करणु आहे। ईरान जे मफ़ादनि, इज़त ऐं वक़ार जो तहफ़ुज़ कयो वेंदो। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त तेहरान कंहिं बि सूरत में ईरान ऐं ईरानी अवाम जे हक़नि तां हथ न खणंदो। समूरी तवानाई सां गॾु ईरानी अवाम जी ख़िदमत कंदा रहंदासीं। ईरानी ख़ातम लंबिया ब्रिगेड चयो आहे त ईरानी फ़ौज जो हथ बि ट्रिगर ते आहे। हमिलो थियो त वॾे पैमाने ते जवाबी कार्रवाई कई वेंदी। तकड़ी फैसलाइती ताक़तवर ऐं वॾे पैमाने ते जवाबी कार्रवाई कई वेंदी।
1: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कतरी हमन सब सां फोन ते राब्तो, ॿिए तरफ़ लाॻापन ऐं विच ओभर जी तब्दील थींदड़ सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठ। ॿिन्ही अॻवाननि जो ख़िते जी अमुन ऐं इस्तेहकाम लाइ सफ़ारती कोशिशूं जारी रखण ते ज़ोर। शहबाज शरीफ़ चयो त पाकिस्तान ख़िते में जटादार अमन जी क़याम लाइ सफ़ारती कोशिशूं जारी रखंदो।

0: सिंध में पाणी जी शदीद कोट बावजूद पंजाब तरफा गैर कानूनी लिंक कैनाल जरिए पाणी खणण जारी। सिंध जा चूंडल नुमाइंदा आबपाशी खाते मामले ते खामोश इख्तियार करे वरती। ज़रियन मूजिब पंजाब सी जी लिंक कैनाल जरिए 10,000 क्यूसिक ए टीपी लिंक कैनाल जरिए 8,122 क्यूसिक पाणी गुजरियल 4 डीहन का रोजानी बुनियादन ते खणी रहियो आहे। सिंध में पाणी जी सख्त कोट बावजूद हिस्सा में मौजूद सिंध जे नुमाइंदन ए आबपाशी खाते कंहिं भी किस्म जो एहतजाज न कयो।
1: सिंध असेंबली सरकारी नौकरियुनि लाइ उमिरि जी हद में 15 साल रियायत ॾियण वारो ठहराउ रद्द करे छॾियो। एम क्यू एम जे शबीर कुरेशीअ पारां पेश कयल ठहराउ जी हुकूमत मुखालफत कई। घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार चयो त सुप्रीम कोर्ट 15 सालनि वारी उमिरि जी रियायत ख़तम करे छॾी आहे, रुगो 5 साल रियायत ॾेई सघिजे थी। अदालती फ़ैसिले ते अमल करण जा पाबंद आहियूं। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन चयो त पीपुल्स बस सर्विस बि समूरी सिंध में हलाई वेंदी। कराचीअ जी बहितरीअ ते बि ध्यानु आहे।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर KTN News।

0: बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मैनेजर 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
0: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद
1: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नॉर्थकाड़ी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
2: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 03125252786
2: जी हा 2315-2575-786
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं ॿारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़श ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फरायंद सर अंजाम दे रहा हूँ पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, माथली और माथली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
2: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713030।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
1: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
2: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
1: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
2: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझन 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
2: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
1: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाड़ी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713023920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
1: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
2: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूदु हूंदा,
1: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
2: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
2: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
1: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4